0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री रूबियो कल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए 4 दिन की यात्रा पर भारत पहुंचे। श्री रूबियो ने कल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश तथा ऊर्जा सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की बात दोहराई। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को होगी। बैठक में विदेश मंत्री डॉ जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में 20 अरब डॉलर का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में 20 अरब डॉलर से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में बोइंग कंपनी के वैश्विक लोक नीति और व्यावसायिक रणनीति के कार्यकारी उपाध्यक्ष जेफ शौकी से मुलाकात की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने विमानन और अंतरिक्ष निर्माण क्षेत्र में भारत अमरीका सहयोग को आगे बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कनाडा की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि श्री गोयल ओटावा और टोरंटो में द्विपक्षीय बैठक करेंगे जिसका उद्देश्य व्यापार, निवेश और भारत कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर चल रही बातचीत को आगे बढ़ाना है। इस समझौते के लिए नियम और शर्तें इस साल मार्च में प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की भारत यात्रा के दौरान तय की गई थी। श्री गोयल की यात्रा के दौरान बातचीत का एक और दौर ओटावा में आयोजित किया जाएगा। दोनों पक्ष इस वर्ष के अंत तक एक संतुलित और आपसी हित के समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने की दिशा में काम कर रहे हैं। भारत रूस सैन्य तकनीकी सहयोग पर अंतर सरकारी आयोग के अंतर्गत भूमि मामलों से जुड़े 5वें उपकार्य समूह की बैठक कल नई दिल्ली में सम्पन्न हुई। रक्षा मंत्रालय के अपर जन सूचना महानिदेशालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने ऑपरेशनल तालमेल और द्विपक्षीय सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से सार्थक विचार विमर्श किया। प्रतिनिधिमंडल ने रक्षा सहयोग के नए तरीकों की तलाश के लिए शत्रुजीत ब्रिगेड का भी दौरा किया। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था 21 जुलाई तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ एक वर्चुअल बैठक के बाद कल कोलकाता में इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या मौजूदा 117 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने टीसीएस कंपनी के एक केंद्र से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि कल 4 आरोपियों मतीन पटेल, निदा खान, दानिश शेख और तौसीफ अतहर के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया गया। आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: कार्यक्रम सुनुचन्ति आकाशवाणी संबलपुर केन्द्ररु आरंभ करुचु भक्ति गीतर कार्यक्रम वंदना। वंदना कार्यक्रमर प्रथम कंठशिल्पी आरती मिश्र, ଗୀତ ରଚନା ଲିଙ୍ଗରାଜ ଚିନ୍ଦ।

0: ଶୁଣୁଥିଲେ ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସକୃତ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତର 390ତମ ଭାଗ। ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିପାରିବେ ଟିକିଏ ପରେ।
1: ମନ୍ କି ବାତ୍ ହେ ଜନ ଜନ କି ସଭି କି କୁଛ ଅପନି ସି ସଂଘର୍ଷୋଁ କେ କୁଛ କିସ୍ସେ କାହାନୀ କୁଛ ସଫଲତାଓଁ କି ଅନକହୀ ବିରାସତ କି ଉମ୍ମୀଦେ ନୟେ ଭାରତ କି। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव

आप नमो ऐप या माई गोव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: जैविक सार जेंदा की गोबर खत हो कि भर्मी कंपोस्ट आमको समय समय के देवार के पड़वा सिद्धिने पैन कम देमा आर खरा दिने माइटा जेंदा की उदार हवा से हिसाब आमे पैन देमा आर विशेष करी आमे ध्यान रखमा कि गछे जेतेले फूल धरबार समय आसला न से समय ती पैन देबाटा टिके कम करी नमा आर फल धैला बेल के भरपूर मात्रा ने पैन देमा गछ मान को जेन डाही माने सुखी जायथिसी कि जेंथि रोग लागी जायथिसी ताकि आमे काटिगिरी अलगे नमा जेंदा की गछ भल से बढ़ी पारबा आर जेन डाही थी रोग लगी छे से डाही टा जदि काटिगरी अलगे नउछु बेले काना होउछे से जगह रे से गछ मानकु जेन रोग लगी छे से अलगा डाही पोखरा मानकु माने सेडा गछ मानकु अलगा आड़े व्यापी करी जाई नाई पारे लीचू गछ मानकु फलसरे रोग नु बचाबार के हेले फल धरबार 15-20 दिन आघरु पैन थी लीटर पिछा 2 ग्राम कार्बन डीजम मिसे करी आमे झिटमा जहार द्वारा कण हेबा कि फल माने जेन सड़ी जाउथिसी सेटा नाई सड़े फलटा भल से हेबा आर आमे भल अमल पाई परमा लीचू गछे बोरन दिया जायसी जेनटा कि तार बहुत लाभ अछे जेनटा कि इटा लीचू फल मानकु फाटबार नु बचासी आर फल टिके अटका हेबा आर टिके बड़ बड़ हेबा आर गुटे रोग लीचू गछ मानकु देखा जायसी जेनते कि तार पतर माने अधा सुखी जायथिसी आर अधा कंचाथिसी इतार नु बचाबार के हेले फल तुलाटा सहले गुटे गछ पिछा आमे 20-25 ग्राम लेखा कार्बोफ्यूरन आमे मैट थी तार चेरर चारी आड़े आमे हे जागारे कुड़ी नमा आर थी मिसे करी हेनो देई नमा लीचू गछर डाही मानकु भूल आर गुटे प्रकार रोग हेसी जेनथि कि से डाही माने सरी सरी गला बेगिर दिससी तो सेनो आमे काण करमा पैन थी चून घुली करी एंता काथी आमे जंता चून लेपसु घरे सेनता चून लेपला लेखेन से गछ सारा आमे लेपी नमा जहार द्वारा काण हेबा कि से पोक माने आर सेनो नाई लागन आर गुटे गुटे लीचू गछ मानकु कणा कणा हेकरी सेनो पोक माने एंता हुदा हुदा हेकरी जाली बागिर घर करिथिसन तहने आमे काणा करमा किरोसिन देगरी चिकन माटी थी से कणा मानकु चुटी नेमा तो हेले इ पोक माने आर नाई बढ़ी पारन तो इ पोक कथा में जन कहली इमाने गछर बंधु नेकरी पूरा से डाही पखरा जन बाहरी थिसन से तो किनसी जगह के इमाने नहीं छाड़न आर इताके जदि आमे ठीक भावे तार उपचार नहीं कला जदि इमानकु आमे हटाबार व्यवस्था नहीं कला तो गछ माने पूरा मरी जिबे तेहरु फल धरला परे आमकु विशेष भावे इ कथा मानकर ध्यान रखबार पड़बा कि केनता करी फल भल हेबा जहार द्वारा आमे ताके बजार नेकरी बिकी पारमा तार लागी पहला काण करमा आमे लीटर पिछा 2 ग्राम बोरिक एसिड कि बोरन आमे मिसे करी झिटमा गछ माने जेते बेले फल धरिछन सेते बेले तांकु आमे जाली थी ढाकी नमा जहार द्वारा काण हेबा कि चढ़े माने से फल मानकु नाई खाई पारन आर फल तुलना बेल के विशेष करी आमकु इकथा ध्यान रखबार के पड़बा कि ताके भल भाबे टिके आराम से आमे तुलमा जेंटा कि तार डाही माने नाई भांगी जाऊ फल तुला सहला बेल के आमे इकथा के विशेष भाबरे नजर थी रखमा कि तार आर्द्रताटा शतकड़ा 85-90% रहबा जहार द्वारा गछ माने भल से रहबे आर आमर बगीचाटा सुरक्षित रहबा तो एंता करी आमे लीचू गछर जतन बातन नेले लीचू गछ माने आमर सुरक्षित रहबा आमर बगीचारे अयतका फल हेबा आर से फल माने मीठा लगबा आर फल टिके बड़बड़ हेबा जहार द्वारा इताके आमे बजार थी बिकी करी दुई पैसा अयतका लाभ करी पारमा
1: सुनिले चासर हाल आकाशवाणी संबलपुर आरंभ करुचु कुनी कुनी पिलांक पाई आमर कार्यक्रम इटिकिली मिटिकिली

यही थिला कुने कुने पिलांका पय हमर कार्यक्रम इटिकली मिटिकली आकाशवाणी संबलपुर सुगम संगीत रे आज अमूल्य प्रसाद मल्लिकंक कंठरे यही भक्ति गीतटी शुणंतु। गीत रचना भास्कर चंद्र महापात्रा।

0: पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री रूबियो कल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए 4 दिन की यात्रा पर भारत पहुंचे।
1: क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को होगी। बैठक में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड की परिकल्पना के अनुरूप प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में क्वाड की वर्तमान पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी और हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों तथा आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: श्री रूबियो ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश तथा ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमरीका वैश्विक कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की बात दोहराई और बातचीत तथा कूटनीति के जरिए संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपनी अपील को दोहराया। विदेश मंत्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर अमरीकी दृष्टिकोण साझा किया। उन्होंने भारत को अमरीका का अत्यंत महत्वपूर्ण साझेदार बताया। इस बीच श्री रूबियो ने कहा है कि अमरीका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में अमरीकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमरीका में 20 अरब डॉलर का निवेश किया है।
2: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में 20 अरब डॉलर से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ वर्चुअल बैठक के बाद कल कोलकाता में इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थी को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। आयुष्मान भारत आरोग्य मंदिर के संबंध में अगले महीने सहमति पत्र पर नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए जाएंगे। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या मौजूदा 117 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अलीपुरद्वार, कालिम्पोंग और दक्षिण दिनाजपुर जिलों में नए मेडिकल कॉलेज खोलने और उत्तर बंगाल के लिए एक नए एम्स के प्रस्ताव भी केंद्र सरकार को भेजा गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना के साथ साथ स्वास्थ्य विशेषज्ञों, चिकित्सा पेशेवरों का प्रशिक्षण भी बहुत महत्वपूर्ण है। वे कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान बोर्ड के 23वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में स्वस्थ भारत की परिकल्पना विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में प्रमुख भूमिका निभाएगी।
1: हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में 2047 तक विकसित भारत बनाना है। जब हम 2047 तक विकसित भारत की बात करते हैं तो स्वास्थ्य और स्वस्थ भारत एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जब हम स्वस्थ होंगे तभी सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
0: सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के तहत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था 21 जून तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। एक रिपोर्ट।
3: विकसित भारत जी राम जी एक्ट ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। नए कानून के तहत अब एक वित्तीय वर्ष में रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। मंत्रालय के अनुसार इस कानून के मसौदा नियम धारा 33 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत तैयार किए गए हैं।

0: मंत्रालय ने बताया कि मसौदा नियमों को जनता से सुझाव और राय लेने के लिए सार्वजनिक किया गया है। इनमें संक्रमण प्रावधान नियम, राष्ट्रीय स्तर संचालन समिति नियम, केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद नियम, प्रशासनिक खर्च नियम और शिकायत निवारण नियम शामिल हैं। नए कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अलावा तय समय के भीतर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी रामजी एक्ट 2025 को इस महीने की 11 तारीख को अधिसूचित किया गया था और यह इस साल 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने टीसीएस कंपनी के एक केंद्र से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि कल 4 आरोपियों मतीन पटेल, निदा खान, दानिश शेख और तौसीफ अतर के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया गया। उन्होंने कहा कि इस मामले में अगले कुछ दिन में 7-8 अन्य आरोपियों के खिलाफ अतिरिक्त आरोप पत्र दाखिल होने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल से बातचीत के बाद ईरान के साथ एक समझौते पर काफी हद तक सहमति बन चुकी है। उन्होंने कहा कि समझौते में होर्मुज जल डमरू मध्य खोलना भी शामिल है। एक रिपोर्ट।
4: श्री ट्रंप ने कहा कि समझौते के अंतिम पहलुओं और विवरणों पर चर्चा जारी है, शीघ्र ही इसकी घोषणा की जाएगी, लेकिन उन्होंने समझौते की समय सीमा के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि समझौते के बारे में इजराइल के साथ सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन और बहरीन से बात की गई है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने अमरीकियों पर विरोधाभासी बयान देने का आरोप लगाया। अमेरिका और ईरान के बीच 8 अप्रैल को युद्ध विराम पर सहमति बनी थी और तब से दीर्घकालिक शांति समझौते के लिए बातचीत जारी है। अमेरिका द्वारा ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी के कारण ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद कर दिया है। समझौते को लेकर मुख्य रुकावटें ईरान के परमाणु कार्यक्रम के भविष्य और होर्मुज जल डमरू मध्य पर उसके प्रभाव तथा क्षेत्र में अमरीकी सैन्य उपस्थिति से संबंधित रही है। समाचार कक्ष से चंद्रशेखर शर्मा।
1: अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी की घटना हुई है। घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके को घेर कर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इस बीच सीक्रेट सर्विस ने घटनास्थल के पास ही एक संदिग्ध व्यक्ति को गोली मार दी। इस दौरान एक नागरिक भी गोली लगने से घायल हो गया। घटना के समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में ही मौजूद थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कनाडा की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि श्री गोयल ओटावा, टोरंटो में द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जिसका उद्देश्य व्यापार, निवेश और भारत कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते CEPA पर चल रही बातचीत को आगे बढ़ाना है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ के कुछ क्षेत्रों में आज भीषण लू चलने की आशंका व्यक्त की है। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों में भी ऐसा ही मौसम रहेगा। गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने 10.09 सेकंड के नए राष्ट्रीय कीर्तिमान के साथ ये उपलब्धि हासिल की। गुरविंदर का पिछला कीर्तिमान 10.17 सेकंड था। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। अनिमेश कुजूर ने 10.20 सेकंड के साथ रजत पदक जीता। प्रणव प्रमोद को 10.29 सेकंड के साथ कांस्य पदक मिला। आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। यह मैच दोपहर 3:30 बजे से मुंबई में खेला जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर

0: पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म के 16 कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इस श्रृंखला में पद्म पुरस्कार विजेताओं के कार्यों और जीवन के बारे में जानकारी दी जाएगी। इनका प्रसारण कल सोमवार को 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर किया जाएगा। श्रोताओं से अनुरोध है कि वे आज और कल सुबह 9:10 से आकाशवाणी से जुड़े रहें। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद लवली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपने के दौरान ये कहना कि देश के नौजवानों को मिले ग्लोबल एक्सपोजर लोक सत्य में है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, प्रधानमंत्री ने कहा, युवाओं को ध्यान में रखते हुए ही हमने किए हैं अंतर्राष्ट्रीय समझौते। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के भारत दौरे को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान कहता है, मोदी से मिले रूबियो, अमरीका आने का न्योता। नवभारत टाइम्स के अनुसार, रूबियो से मिलकर पीएम बोले, बात से निकले संघर्ष का हल। रूबियो की भारत यात्रा पर दैनिक जागरण अपने संपादकीय में लिखता है कि उनके भारत दौरे की शुरुआत के बाद जिस तरह उन्होंने अपने समकक्ष से मिलने की परंपरा को तोड़ते हुए प्रधानमंत्री से मुलाकात की, ये प्रतीत होना स्वाभाविक है कि वे दोनों देशों के संबंधों को प्रगाढ़ करने में विशेष महत्व दे रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह के महाप्लान स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट पर लोकसत्य ने संपादकीय में लिखा है कि गृहमंत्री की ये परियोजना वक्त की नजाकत को देखते हुए समीचीन है कि भारत के लिए आवश्यक भी है। अखबार के अनुसार, घुसपैठियों को रोकने के लिए हमारी सीमाएं मुस्तैद और सुरक्षित होनी जरूरी है। केंद्र सरकार का जिमखाना क्लब की जमीन 5 जून तक सरकार को सौंपने का समाचार अमर उजाला सहित सभी अखबारों में है। पंजाब केसरी के अनुसार, सरकार का कहना है कि ये भूखंड रक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत और सुरक्षित करने के लिए आवश्यक है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 12वीं कक्षा की आंसर सीट की स्कैन कॉपी के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की जानकारी दैनिक भास्कर ने विस्तार से दी है। देश का बड़ा हिस्सा भीषण लू की चपेट में, शीर्षक से जनसत्ता लिखता है, गर्म हवाओं से मस्तिष्क और आंखों पर पड़ रहा है बुरा असर। पत्र ने चिकित्सकों की सलाह को भी प्रमुखता दी है कि गंभीर सिरदर्द, चक्कर आना और बेहोशी जैसे लक्षण दिखते ही तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। राजस्थान पत्रिका ने इस वैश्विक अध्ययन को प्रमुखता से दिया है कि मुंबई विश्वविद्यालय ने दुनिया को दिए 31 अरबपति। पत्र ने इसे भारतीय सपनों की जीत बताते हुए लिखा है, दुनिया में सबसे अधिक अरबपति बनाने वाले विश्वविद्यालयों की सूची में ये 10वें नंबर पर पहुंच गया है।
0: धन्यवाद फरत। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना जुलाई से लागू होगी। स्वास्थ्य साथी योजना के लाभार्थी भी इसमें शामिल होंगे। महाराष्ट्र विशेष जांच दल ने नाशिक टीसीएस दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ समझौते पर काफी हद तक सहमति बनी, होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलना भी शामिल। मौसम विभाग ने दिल्ली सहित उत्तरी मध्य पूर्वी भारत में आज भीषण लू की आशंका व्यक्त की। और गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Akashwani presents Morning News. Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar to hold bilateral talks with U.S. Secretary of State Marco Rubio in New Delhi today. Ayushman Bharat scheme to be rolled out in West Bengal from July. Swasthya Sathi beneficiaries to be included. Maharashtra SIT files charge sheet against 4 accused in Nashik TCS sexual assault and religious conversion case. US President Donald Trump says Iran deal including reopening of Strait of Hormuz largely negotiated. IMD forecasts severe heat wave conditions in some parts of northern, central and eastern India, including Delhi today. And in athletics, Gurinderveer Singh wins men's 100-meter gold with new national record at Federation Cup in Ranchi. And now the news in detail. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar will hold bilateral talks with U.S. Secretary of State Marco Rubio at Hyderabad House in New Delhi today. They will discuss a wide range of issues related to regional and global peace and security. Secretary Rubio arrived in India yesterday on a 4-day visit to participate in the Quad Foreign Ministers

0: हेलो अनुरोध आपण मानको मन पसंद कथाचित्र गीतर कार्यक्रम हेलो अनुरोध
1: हेलो हेलो जुहार आज्ञा किए कहते आपण परिचय श्रोता मानक देवे जाऊ आपण फोन टा आज पहला पहला लगी जाइए आज्ञा
2: बहुत
1: खुश आता अच्छा आपण
2: बहुत बढ़िया
1: हाँ अच्छा तो आपण जोरदार गरम मान आईसक्रीम बेपार चलवा ही चलवा आपण को सुहेचे बोलन तो गरम टा हाँ पानीपाग विभाग आकलन अच्छे जे बहुत गरम रहा वर्ष बोली सुपर एल निनो आउछे बोली तो आज केन गीत सुनमा आज्ञा

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: हेलो
2: बहन जी, आपको और सभी सुनने वाले श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
1: हाँ जी, आप कहाँ से बोल रहे हो और आपका परिचय दे दीजिए हमारे सुनने वालों को।

0: किराए घर में बोल रहा हूँ।
1: पंजाब से आप बोल रहे हैं?
0: हाँ जी बहन जी, पंजाब से बोल रहा हूँ।
1: आप हमारे कार्यक्रम सुनते हैं?
0: हाँ बहन जी, कभी कभी सुनते हैं, क्योंकि चैनल बहुत हो गया है तो थोड़ा थोड़ा समय कभी किसी चैनल को कभी किसी चैनल को ऐसे सुनते रहते हैं।
1: तो फिर आकाशवाणी संबलपुर का कार्यक्रम आपको कैसा लगता है जो भी सुनते हैं?
0: बहुत बढ़िया बहन जी, बहुत बढ़िया लगता है।
1: बहुत बढ़िया लगता है।
0: हाँ जी हाँ जी।
1: तो आप तो मतलब सोने की नगरी बोल रहे हैं वहीं से? स्वर्ण मंदिर की नगरी, गुरु जी
0: की, दूध की नदियाँ भी कह सकते हैं।
1: हाँ, गुरु नानक की नगरी से बोल रहे हैं आप?
0: हाँ जी हाँ जी, जहाँ दूध मक्खन पेड़ा दही लस्सी सब कुछ बहुत ही मिलता है पंजाब में।
1: तो फिर आज कौन सा गाना सुनेंगे?
0: बहन जी आज मैं सुनूंगा फिल्म नीला आकाश का गीत, और आशा जी और रफी जी का गाया हुआ है, थोड़ा सा उसकी दो लाइनें मैं गुनगुना के बताना चाहूंगा।
1: जी बहुत बढ़िया, आप बहुत सुंदर गाना पसंद किए हो तो।

0: बहुत बढ़िया। तो आपका पंजाब के बारे में कुछ बताइए हमारे श्रोताओं को, कैसा मौसम चल रहा है?
1: खाने को तो बहुत ही बढ़िया चीजें मिल जाती हैं। जैसे
0: वहां का
1: पहले भी
0: मक्खन?
1: आपने जिक्र किया कि जहाँ का मक्का की रोटी, सरसों का साग, मक्खन का पेड़ा,
0: जी
1: लस्सी, दूध, दही, और जहाँ गुरुद्वारे हैं गुरुओं के, वो दर्शन करने के लिए जैसे अमृतसर है, वहाँ दुनिया भर के आते हैं और नतमस्तक होते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। और हमारे पास भी बठिंडा जिला में दमदमा साहब, वो भी एक तीर्थ है गुरुओं का,
0: जी
1: वहां भी लोग बहुत जाते हैं। और वैसे जहाँ के लोग खूब तगड़े होते हैं, खूब खाते पीते हैं, चिंताओं से मुक्त हैं, सभी किस्म के मौसम जहाँ होते हैं, गर्मी भी बहुत होती है और सर्दी भी बहुत होती है।
0: जी अगस्त में अगर चलेंगे तो गर्मी का बोलबाला होता है।
1: आजकल तो गर्मी का बोलबाला है जी।
0: नहीं, अभी तो, अभी जो गर्मी है उसी से भी ज्यादा लगता है अगस्त के महीने में।
1: हाँ, जून जुलाई अगस्त, 3 महीने तो लगभग बहुत गर्मी के होते हैं, गर्मी, उसके
0: हाँ,
1: बाद बरसात वगैरह शुरू हो जाती है, तो फिर थोड़ी सी राहत मिल जाती है।
0: अक्टूबर, अक्टूबर में थोड़ा सा ठंड हो जाता है।
1: हाँ, मौसम
0: लेकिन
1: बदल जाता
0: उससे
1: है, थोड़ा
0: पहले
1: थोड़ा
0: जो
1: बदलने
0: गर्मी
1: लगता
0: होता
1: है, फिर
0: है,
1: दिवाली आ जाती है तो थोड़ा थोड़ा ठंड हो जाता है।
0: जी वहां पे जो भी जाए वहां का खाना खा के पूरा तगड़ा ही हो जाएगा।
1: आप भी कभी उधर आओ
0: जी
1: तो
0: हम गए
1: देखो
0: हैं,
1: पंजाब के नजारे।
0: हम गए हैं जी, पंजाब में गए हैं।
1: अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है, आपने देखा पंजाब।
0: हाँ, वहां का क्रॉस लाइन भी देखे हैं, पाकिस्तान का बॉर्डर जो वहां पे जो होता है ना, वो कार्यक्रम भी बहुत बढ़िया। पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर में जो जो मार्च होता है, जो मार्च होता है, जो फ्लाग जो निकालते हैं, वो वाला देखने में बड़ा मजा आता है।
1: बाघा बॉर्डर पे। हाँ,
0: वाघा बॉर्डर का बात कर रहे हैं हम।
1: बाकी जहाँ का सारा ही वातावरण भी बहुत बढ़िया है जी, तो खूबसूरत लोग हैं, मीठे बोलने वाले लोग हैं,
0: जी
1: मीठी
0: बढ़िया।
1: बोली है और बढ़िया पहनावा है, हर
0: हाँ,
1: चीज जहाँ की पंजाब की बहुत बेहतर से बेहतरीन है।
0: वो गुरुद्वारा में जो होता है खाना ना, उसका
1: हाँ, बहुत
0: मतलब
1: लंगर चलते ही रहे, जो 24 घंटे लंगर चलता है, फ्री लंगर चलता है।
0: लंगर का खाना बहुत बढ़िया।
1: हाँ, जब भी कोई भी आ जाए गुरुद्वारे में तो उसको खाना तो मिलेगा ही मिलेगा।
0: हाँ, बहुत बढ़िया। तो आप बहुत बढ़िया गाना पसंद किए हो, फिर जब फोन करेंगे तो बात करेंगे। अभी आपका पसंद का गाना सुने।
1: ठीक है बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: धन्यवाद जी।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात। मन की बात है।

0: उपलब्ध हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: हेलो,
2: हेलो,
1: हाँ किए कौतले यहाँ?
2: हेलो
1: हेलो किए कौतले आपण के पाखरे बोधे रेडियो बाजुचे टिके साइट कर दोन
2: आगे आगे मैं जाऊं तो खुला लगा दे
1: फोन फोन स्पीकर रे अछि के आपण को हेलो हाँ या आपण को नाट आउ थरे कोन तो टिके तमने सुविला नि भल करी तो
2: तेलेटा पुष्टि गत करे निचले कोई कटक रु कहो
1: के अच्छा कटक रु कहो छन आपण
2: आगे आगे
1: आज केन गीत सुनमा
2: आज गीत सुनेबी
1: दिल्ला तुम्हारा रो सुन बे
2: आगे आगे
1: अच्छा आओ अपन काना फोन करी थी ले आगरु ना अपन कथा ही थी ना मैं
2: आगरु जी तो फोन कर देनी ये मर कार है आगरु कितने दिन फोन लगे जी कार फोन बोला लगे नहीं बोले चंद बार बार लगे नहीं फोन लग रहा नहीं आओ आज लगे ही नहीं अब बहुत तो अब हमारा पौर फोन बोल लगे बहुत तो मैंने पांच एपिसोड पौर मोर फोन लगला
1: जा भी हो आपण कर फोन तो लागला कथा हैला हमें
2: आ गया बहुत खुशी लागो छी आपण से तो एते दिन परे मु कथा है कि मते बहुत खुशी लागो छी
1: अच्छा कटक रे छन मौसम टा केनता अछे
2: कटक रे बहुत जोर खरा हो छी खराब लागो छी ए खरा रे तक मात्र दिन दिन को बढ़ु छी आ कमी नै लागो नै कितु खरा हले भी आमे बहुत दिन प्रचुर मात्र रे पानी पीबा आ आमे बहुत जल पीबा आ ता सागर रे अन्य माने को भी जल बंटन करबा आ माने खरा रो खरारू टिके माने खराब खरारू टिके पवन पाए पाई आमे जे गछ लगे बहुत गुडा गछ ताने पवन टिके आमे खाई जाइबा आ जा पर जे आमे भले रहि परि आ फिट रहि परिबा आ अन्य माने को भी भले रखि परिबा
1: महानदी कुळ रे काठजोडी कुळ रे कटक शहर
2: आ गया आमे गाँव रे एते गुडा गछ लगा है जे माने बहुत मात्रा रे गछ लगाए छे आ पवन माने बहुत जोर रे होउ छे
1: बहुत भलो आपण कर खरा जेते हेले भी जदि गच्छ अछे किछ असुविधा नाइ हुए ने
2: आउ आपण जे बुझन जे सब सता माने जे गच्छ लगान तले बहुत भलो होता पवन किछ खाइ गरे आउ बहुत मात्रा रे जळ भी पीले आउ रे बहुत भलो
1: आपण बहुत सुंदर सुंदर गोटे कथा कहले आमर सब श्रोता मान को गच्छ लगाबे तार संगे प्रचुर मात्रा रे पानी पीबे खाली तार संगे आमे
2: आउ हमर जीवन जळाई हमर जीवन
1: हाँ आज्ञा समस्ते ये खरा दिने प्रचुर मात्रा रे शोष नाई हेले भी पानी पिउन ना आउ तार संगे आउ गोटे जोड़ी दौछे आपण जन आमर एछन मौसम रे जन फल गुड़ाक मिलुछे जनता तरबूज काकुड़ी आंब इटा भी प्रचुर मात्रा रे खाउन निशा सेवन ठारू दूर रे रहुन ई सब कले जाई आमकु अंशुघात नाई हुए ना हेले अंशुघात
2: हे बस ना ए सब माने बहुत मात्रा गछ रे गे पवन खाइबे त हम के जई सबत लेमु पानी करी पीरा आ हम देबे बहुत बल काई ना जय हमर दिन के दिन का जय रु जय है सो माने जय ही कमी जाउ छे हमर जय रे जा पर हमकु असमात आउ छे आ हाथ से गई जाउ छे हमर किडनी हमर खराब है ये जाउ छे दिन के दिन
1: अंशुघात रु रक्षा पाबार लागि दिन रे 11 टा रु 3 टा भितरे आमे बाहर के भी नाही बाहरु खरा रे
2: आगा रे अंशुघात रु माने रक्षा पाए भाई आमे जदी 11 टा रु माने कोरे खरा रे जिबा नी आउ ता संगे जोर भी जिबे तत्ते भाषा रे जिबा पवन खाइ परिबा आमे
1: निश्चय आज्ञा
2: आपण खरा रे जमा जाई हवनी
1: आपण बहुत सुंदर संदेश देले आ बहुत सुंदर आपण चलचित्र टे बाछि छन चलचित्र आपण कर पसंद गीतटा मोर पसंद तो दिल है तुम्हारा रो जेंटा टाइटल सॉन्ग टा मुझे सेटा अपन को सुने ही दूँ छे आसुन सुन माई सुंदर गीत टा आ गया
2: राउत नमस्कार
1: नमस्कार आ गया

0: ଶୁଣୁଥିଲେ ହିନ୍ଦୀ କଥାଚିତ୍ର ଗୀତର ଲାଇଭ୍ ଫୋନ୍ ଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲୋ ଅନୁରୋଧ ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲେ କରି ପ୍ରସାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। बैठक में क्षेत्रीय और वैश्विक शांति तथा सुरक्षा के मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा की संभावना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री रूबियो क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए चार दिन की यात्रा पर कल भारत पहुंचे।
2: क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को होगी। बैठक में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड की परिकल्पना के अनुरूप प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में क्वाड की वर्तमान पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी और हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों तथा आपसी चिंता अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले के फालता विधानसभा क्षेत्र में हुए पुनर्मतदान की मतगणना जारी है। इसके लिए 21 मई को वोट डाले गए थे। निर्वाचन आयोग ने फालता विधानसभा क्षेत्र में सभी मतदान केंद्रों पर 29 अप्रैल को हुआ मतदान रद्द कर पुनर्मतदान का आदेश दिया था। मतदाताओं को डराने धमकाने, मतदान केंद्रों के अंदर अनधिकृत उपस्थिति और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के साथ छेड़छाड़ की रिपोर्ट के बाद यह निर्णय लिया गया था। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से लागू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ बैठक के बाद इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के वर्तमान लाभार्थियों को भी आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या 117 से बढ़कर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए प्रारूप प्रकाशित किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन और संस्था 21 जून तक प्रारूप के बारे में आपत्ति तथा सुझाव दे सकते हैं। अधिनियम में एक वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। इसके अनुसार निर्धारित समय में काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने टीसीएस कंपनी से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच

0: के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि चार आरोपियों के खिलाफ कल अभियोग पत्र दाखिल किया गया। उन्होंने कहा कि इस मामले में अगले कुछ दिन में 7-8 अन्य आरोपियों के खिलाफ अतिरिक्त आरोप पत्र दाखिल होने की संभावना है। अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास आज गोलीबारी हुई। घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके को घेर कर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इस बीच सीक्रेट सर्विस ने घटनास्थल के पास ही एक संदिग्ध को मार गिराया। इस दौरान एक नागरिक भी घायल हो गया। घटना के समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में ही मौजूद थे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल से बातचीत के बाद ईरान के साथ एक समझौते पर काफी हद तक सहमति बन चुकी है। उन्होंने कहा कि समझौते में होर्मुज जलडमरू मध्य खोलना भी शामिल है। श्री ट्रंप ने कहा कि समझौते के अंतिम पहलुओं और विवरणों पर चर्चा जारी है और शीघ्र ही इसकी घोषणा की जाएगी। समझौते की समय सीमा के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागाई ने अमरीकियों पर विरोधाभासी बयान देने का आरोप लगाया। भारत रूस सैन्य तकनीकी सहयोग पर अंतर सरकारी आयोग के भूमि मामलों से जुड़े पांचवें उपकार्य समूह की बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह बैठक भारतीय सेना और रूस की थल सेना के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित हुई है। दोनों पक्षों ने ऑपरेशनल तालमेल और द्विपक्षीय सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से सार्थक विचार विमर्श किया। गुरिंदर वीर सिंह ने फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने 10.09 सेकंड के नए राष्ट्रीय कीर्तिमान के साथ ये उपलब्धि हासिल की। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ के कुछ क्षेत्रों में आज भीषण लू की आशंका व्यक्त की है। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों में भी ऐसा ही मौसम बना रहेगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: श्रोतामाने कार्यक्रम सुनुछन आकाशवाणी सम्बलपुर केन्द्र थु कार्यक्रम प्रसारित होउछे मीडियम वेव थी 317.5 मीटर और 945 किलो हर्स थी एफएम महानदी थी 101 मेगा हर्स थी इताके छाड़िकरी आपण माने आमकु न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल आप थी गला सुनि पारबे। आसुन सुनमा उड़िया सिनेमार गीत सबुनु पहले सिनेमा तू कहिबुना मुर ई गीत के गाइछन तपु मिश्र गीत के लेखिछन बापू गोस्वामी संगीत निर्देशना गुडली रथ।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: सिनेमा तुमु आखिर तारा रो ई गीत के गाई छन शैलभामा ईरा महंती औ मानस। गीत के लेखी छन सत्यनारायण साहू, संगीत निर्देशना मलय मिश्रा।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: एहदे कुमार बापी आउ अंतरा गायथिबार रॉकस्टार सिनेमार ई गीतटाके सुनुन। गीत के लेखिछन अरुण मंत्री, संगीत निर्देशना एस चंद्रकांत।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: বিশাল মিশ্রঙ্কর কণ্ঠনু কার্যক্রমর পরবর্তী গীতকে শুনুন। গীতকে লিখেছেন নীলেশ মিশ্রা।

0: पशु पक्षी को अंशुघात रक्षा करने कि उपाय
1: अंशुघात नई दिन एगारटू अपराह तीनटा पर्यंत टाण खरारे गृहपात प्राणी मानू बाहर को न छाड़ी गुहा कि छाई स्थान में रखत
0: पशुपक्षी को स्वच्छ थंडा पा पीवा दिंतु एवं प्राणी विश्राम स्थान व कोठरे जलकुंडर व्यवस्था करतु
1: गुहा कबाट और झरकार ओदा अखा झुलाई मझे मझे पा सिंचन करतु
0: बुला पशु और पक्षी को अंशुघात रक्षा करने घर आगे जलकुंडर व्यवस्था करतु
1: अंशुघात पशुपक्षी मैंने किसी खाती ना पटिटे निश्वास नेबा सहित धक्के हुंती पाटीरू और नाकपुडारू फेण बाहरे और समय समय जीभ पदा को बाहरी आसे
0: अंशुघात आक्रांत प्राणी को तुरंत ठंडा छाई स्थान को स्थानांतरित करंतु प्रचुर ठंडा पानी पीबा को देबा सहित निकटस्थ प्राणी चिकित्सकों सह परामर्श करंतु
1: अधिक जानिबा पई टोल फ्री नंबर 1962 किंबा 155333 रे जोगाजोग करंतु
0: मत्स्य और प्राणी संपद विकास विभाग ओडिशा सरकार
2: श्रोतामाने सुनुछन गोटे हिंदी सिनेमा क्रम थी मेट्रो इंडिनो सिनेमार गीतमानको संगीतर सुर देइछन प्रीतम कार्यक्रमर परवर्ती गीतके सुनुन अरिजित सिंहर कंठनु गीतके लेखिछन संदीप श्रीवास्तवा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। बैठक में क्षेत्रीय और वैश्विक शांति तथा सुरक्षा के मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा की संभावना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री रूबियो क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए 4 दिन की यात्रा पर कल भारत पहुंचे।
1: क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को होगी। बैठक में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड की परिकल्पना के अनुरूप प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में क्वाड की वर्तमान पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी और हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों तथा आपसी चिंता अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा उपचुनाव की मतगणना जारी है। 5वें चरण में ताजा समाचार मिलने तक भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार दिबांशु पांडा ने बड़ी बढ़त बना ली है। वोटों की गिनती 14 केंद्रों पर की जा रही है। मतगणना 21 चरणों में होगी। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से लागू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ बैठक के बाद इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के वर्तमान लाभार्थियों को भी आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या 117 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए प्रारूप प्रकाशित किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन और संस्था 21 जून तक प्रारूप के बारे में आपत्ति और सुझाव दे सकते हैं। अधिनियम में एक वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। इसके अनुसार निर्धारित समय में काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने टीसीएस कंपनी से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि 4 आरोपियों के खिलाफ कल अभियोग पत्र दाखिल किया गया। अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास आज गोलीबारी हुई। घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके को घेरकर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इस बीच सीक्रेट सर्विस ने घटनास्थल के पास ही एक संदिग्ध को मार गिराया। इस दौरान एक नागरिक भी घायल हो गया। घटना के समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में ही मौजूद थे। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा है कि इसराइल से बातचीत के बाद ईरान के साथ एक समझौते पर काफी हद तक सहमति बन चुकी है। उन्होंने कहा कि समझौते में होर्मुज जलडमरू मध्य खोलना भी शामिल है। श्री ट्रंप ने कहा कि समझौते के अंतिम पहलुओं और विवरणों पर चर्चा जारी है और शीघ्र ही इसकी घोषणा की जाएगी। समझौते की समय सीमा के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाखाई ने अमरीका पर विरोधाभासी बयान देने का आरोप लगाया। गुरिंदर वीर सिंह ने फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने नए राष्ट्रीय कीर्तिमान के साथ ये उपलब्धि हासिल की। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अनिमेश कुजूर ने रजत और प्रणव प्रमोद ने कांस्य पदक जीता। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट आज से पेरिस में शुरू हो रहा है। पहला मैच 3 बार के चैंपियन सर्बिया के नोवाक जोकोविच और फ्रांस के जियोवानी पेत्री पेरिकार्ड के बीच होगा। आज ही अलेक्जेंडर ज्वेरेव और टेलर फ्रिट्स आमने सामने होंगे। विश्व के नंबर एक खिलाड़ी इटली के यानिक सिनर अपना पहला मैच कल खेलेंगे। उधर महिला वर्ग में अमरीका की कोको गॉफ मौजूदा चैंपियन है। आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच दोपहर बाद 3:30 बजे से मुंबई में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ଶୁଣୁଥିଲେ ହିନ୍ଦୀତି ସମ୍ବାଦରେ ଲେଖରି ପ୍ରଚାର କଲୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ର ନୁ ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର ଏହାତେ ଭୁଲ କରୁଛୁ ଆମର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପହିଲା ଗୀତକେ ଶୁଣୁନ୍ ତେଜରାଜ ନାୟକର କଣ୍ଠନୁ ଗୀତକେ ଲେଖିଛନ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: श्रीराम लोहरांकर कंठनो कार्यक्रम रो परवर्ती गीत के लिखिछन पुरातन गीत रचनानो।

कार्यक्रमते यहाँ सुनून सिनेमा एयरलिफ्ट नु यी गीतके गीतके कण्ठ दिन अरिजित सिंह गीतके लेखिछन् कुमार आर संगीत दिन अमाल मल्लिक।

आँखों की गुस्ताखिया कथचित्र कार्यक्रम परवर्ती गीत गीत रचना कौशल किशोर एवं विशाल मिश्र कंठ दे जुबिन नटियाल संगीत निर्देशना विशाल मिश्रा।

0: ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛୁ ଓଡ଼ିଆ ଲଘୁ ସଙ୍ଗୀତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣିପାରିବେ ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने भारत और अमेरिका सामरिक भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया और कहा कि ये भागीदारी व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी और क्षेत्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से है। हैदराबाद हाउस में बैठक के बाद डॉ जयशंकर ने बताया कि श्री रूबियो की भारत यात्रा ऐसे समय में हुई है जब दोनों पक्ष नियमित रूप से एक दूसरे के संपर्क में हैं। उन्होंने ये भी कहा कि खाड़ी क्षेत्र के संबंध में उनकी चर्चा महत्वपूर्ण है क्योंकि क्वाड की बैठक शीघ्र होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर देश में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी का बयान कांग्रेस और विपक्षी दलों की साजिश की ओर इशारा करता है। श्री गोयल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य देश को बदनाम करना, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना और विदेश जाकर विदेशी शक्तियों से भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की अपील करना है। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा क्षेत्र में 21 मई को हुए पुनर्मतदान की मतगणना जारी है। ताजा समाचार मिलने तक 11वें दौर की मतगणना के बाद भाजपा के उम्मीदवार दिवांशु पांडा ने भारी बढ़त बना ली है। उन्हें अब तक 44,891 वोट मिले हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी दूसरे स्थान पर हैं, कांग्रेस के अब्दुल रज्जाक मुल्ला तीसरे और तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान चौथे स्थान पर हैं। वोटों की गिनती 14 केंद्रों पर की जा रही है। मतगणना 21 दौर में होगी। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से लागू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ बैठक के बाद इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के वर्तमान लाभार्थियों को भी आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। मत्स्य पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन मंत्री राजीव रंजन सिंह कल मिजोरम के आइजोल में समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मछली पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन से जुड़ी योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। श्री सिंह 32 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कर्सियांग इकाई ने आज आकाशवाणी एट 90 मैराथन का आयोजन किया। कर्सियांग के विधायक सोनम लामा ने मैराथन को रवाना किया। उन्होंने कहा कि आकाशवाणी की 90 वर्ष की अनवरत और गौरवशाली सेवाओं का स्मरण नेपाल और नेपाली भाषियों के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के शांगसी प्रांत में खान दुर्घटना में मरने वालों के प्रति गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में चीन के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। भारत में चीन के राजदूत शू फिहोंग ने शांगसी प्रांत में खान दुर्घटना के मृतकों के प्रति संवेदना, सहयोग और सहानुभूति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। इस दुर्घटना में अब तक 82 लोग मारे गए हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आज रेलवे लाइन पर हुए एक धमाके में 30 लोग मारे गए और कई घायल हुए। धमाके में एक रेलगाड़ी को मामूली नुकसान पहुंचा और आसपास खड़ी 10 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। सरकार ने इन देशों में मौजूद भारतीय नागरिकों से भी स्थानीय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक स्विट्जरलैंड के जेनेवा में संपन्न हो गई है। बैठक में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुपक्षीय सहयोग के लिए कई संकल्प लिए गए। बैठक में दिमागी दौरों, टीबी, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, आपातकालीन चिकित्सा, हिमोफीलिया, प्रिसीजन मेडिसिन और विकिरण से संबंधित निर्णय लिए गए। ईरान की फुटबॉल टीम ने फीफा विश्व कप के लिए अपना बेस कैंप अमेरिका से मैक्सिको ले जाने का फैसला किया है। इसके लिए उसे फीफा से मंजूरी मिल गई है। फीफा विश्व कप अगले साल होना है। बेस कैंप अमेरिका से हटाने का फैसला ईरान, अमेरिका और इसराइल के बीच बढ़ते भू राजनीतिक तनाव को देखते हुए लिया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: आकाशवाणी संबलपुर वर्तमान आरंभ करुछु संबलपुरी गीतर कार्यक्रम। कार्यक्रमरे प्रथमे शुणन्तु रामचंद्र मेहरको कंठरे एक गीतटी गीतरचना अनुभूल विभार।

0: through a railway line in Balochistan province today. The explosion occurred near the Chaman Fatak railway station in capital city Quetta. A train suffered partial damage in the blast, while 10 vehicles parked in the area were also damaged. Following the incident, an emergency was declared in government hospitals across Quetta, with doctors and medical staff summoned to handle the situation. Railway authorities said the Peshawar-bound Zafar Express was stopped at Quetta railway station after the blast as a precautionary measure. Babar Yusufzai, the spokesperson to the Home Minister, said that all relevant institutions have been placed on high alert following an explosion in the city. US President Donald Trump has thanked law enforcement authorities and secret service agents for the swift action after shooting near the White House. In a post on Truth Social, he said the suspect had a violent history and noted the incident occurred shortly after another recent security-related shooting in Washington. The Secret Service said a man opened fire near White House security checkpoint at the 17th Street and Pennsylvania Avenue, following which officers returned fire. The suspect was hit, taken to hospital, and later died. A bystander was also injured, though it is not yet clear whether the person was struck by the suspect's bullets or by gunfire from officers. The suspect has been identified as a 21-year-old man. President Trump was inside the White House at the time of the incident, and this is the third such shooting-related incident reported near the president in recent weeks. The 125th edition of the French Open, commonly known as the Roland Garros, begins today in Paris. Novak Djokovic will launch his bid for a record-extending 25th Grand Slam title. The three-time champion seeded third opens against French big server Giovanni Mpetsi Pericard. Night session on court Philippe Chatrier, second seed and 2024 finalist Alexander Zverev, and seven seed Taylor Fritz are also among the key men's singles players in action on the opening day. World number one Yannick Sinner will aim for his maiden French Open crown after finishing runner-up to Carlos Alcaraz last year. He will be in action tomorrow. In the women's draw, Coco Gauff will head into the French Open as a defending champion. Meanwhile, world number one Aryna Sabalenka will be aiming to win a first-ever French Open title, having come up second best to Coco Gauff in the final last year. India will also have representation in the men's doubles, with top-ranked Indian player Yuki Bhambri partnering New Zealand's Michael Venus, while N. Sriram Balaji teams up with Brazil's Marcelo de Molina. In IPL cricket, the Super Sunday double header will feature crucial matches for playoff qualification today. In the first match of the day, Mumbai Indians will take on Rajasthan Royals at the Wankhede Stadium in Mumbai at 3:30 p.m. For Rajasthan Royals, it is a must-win game in the pursuit of a playoff berth. For Mumbai Indians, it was one of the most disappointing seasons in the franchise, as they've already been eliminated from IPL 2026. In another clash of the day, Kolkata Knight Riders will face Delhi Capitals at Eden Gardens in Kolkata. The match is scheduled to begin at 7:30 p.m. Last night, riding on an unbeaten 101 runs by skipper Shreyas Iyer, Punjab Kings defeated Lucknow Super Giants by 7 wickets at the Ikana Cricket Stadium in Lucknow. Chasing a target of 197 runs set by Lucknow Super Giants, Punjab Kings scored 200 for 3 in 18 overs. Prav Simran Singh made 69 runs. Earlier, Punjab Kings won the toss and opted to bowl. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India and United States reaffirm strength of strategic partnership between the two countries. External Affairs Mr. Dr. S. Jayashankar calls for early trade deal, stresses on diversified energy supplies for the country. U.S. Secretary of State Marco Rubio describes India as one of the United States' most important strategic partners. BJP candidate Debangshu Panda secures massive lead in West Bengal's Faulta Assembly constituency re-polling. Government advises all Indian citizens to avoid non-essential travel to Congo, Uganda and South Sudan in view of Ebola outbreak. 24 people killed in a blast near railway track in Quetta in Pakistan's Balochistan province. And in tennis, French Open Grand Slam begins today in Paris. And with that, we end the Midday News.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता भारत और अमेरिका ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को महत्वपूर्ण बताया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा, शीघ्र व्यापार समझौता जरूरी, देश के लिए ऊर्जा आपूर्ति के विविधीकरण पर जोर। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र के पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार दिबांशु पांडा ने भारी बढ़त हासिल की। सरकार ने इबोला के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारतीय नागरिकों को कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के क्वेटा में रेलवे ट्रैक के पास हुए विस्फोट में 24 लोग मारे गए। और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट आज से पेरिस में शुरू हो रहा है। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर बातचीत की। दोनों पक्षों ने भारत और अमेरिका सामरिक भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि ये भागीदारी व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी और क्षेत्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से है। डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है।
2: भारत और अमेरिका के बीच राजनीतिक समझ के बारे में हमारे बीच एक रणनीतिक साझेदारी है। ये साझेदारी कई क्षेत्रों में दोनों पक्षों के राष्ट्रीय हितों से बनती है। बैठक में हमने पश्चिम एशिया, मध्य पूर्व, भारतीय उपमहाद्वीप और पूर्वी एशिया से संबंधित घटनाक्रमों पर चर्चा की।
1: उन्होंने कहा कि दोनों देशों के संबंधों का पूरी दुनिया पर असर पड़ता है और कई क्षेत्रों में उनके हित एक समान हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा चर्चा जटिल वैश्विक परिस्थितियों में हुई है, लेकिन उन्हें खुले मन से और सार्थक चर्चा का विश्वास है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्दी अंतिम रूप दिया जाना जरूरी है। विदेश मंत्री ने ऊर्जा व्यापार में हुए विस्तार का स्वागत किया और कहा कि अधिकाधिक स्रोतों से ऊर्जा की आपूर्ति भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी है। डॉ जयशंकर ने यह भी कहा कि दोनों देशों की जनता के परस्पर संबंध महत्वपूर्ण हैं और कानूनी तौर पर आवाजाही में व्यवधान उत्पन्न नहीं होना चाहिए। ईरान संघर्ष के बारे में श्री जयशंकर ने कहा कि भारत और अमरीका दोनों इस पक्ष में है कि दुनिया भर में ऊर्जा की कीमतें कम रहें।
2: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं। दूसरा, हमारे लिए प्रवासी समुदाय का कल्याण और भलाई बहुत आवश्यक है। तीसरा, हम चाहते हैं कि ईंधन की कीमतें कम हों, क्योंकि हम इसके बहुत बड़े आयातक हैं और इसका अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है। हम इस क्षेत्र से सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के समुद्री व्यापार के पूरी तरह पक्ष में हैं। और साथ ही हम ये देखना चाहते हैं कि वहां के बाजार खुलें। हम कोई रुकावट नहीं देखना चाहते। These would be the principles with which we would
1: approach that region. अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि भारत अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण सामरिक भागीदारों में से है।
3: एक रणनीतिक साझेदारी बहुत अलग चीज है। ये उससे कहीं अधिक व्यापक है। जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं, उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
1: श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देशों ने आतंकवाद की पीड़ा झेली है और दोनों देश उन मुद्दों पर एक जैसी राय रखते हैं जो आने वाली सदी की रूपरेखा तय करेंगे। श्री रूबियो ने कहा कि ऊर्जा के मुद्दे पर भी दोनों देशों की राय एक समान है। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि अमेरिका 21वीं सदी के लिए अपनी आप्रवासन नीति को नया रूप दे रहा है। ईरान के बारे में उन्होंने कहा कि अगले कुछ घंटों में सकारात्मक खबरें आ सकती हैं। दोनों नेताओं ने खाड़ी और हिंद प्रशांत सहित क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। श्री रूबियो की भारत यात्रा ऐसे समय में हुई है जब क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक भी होने वाली है। इससे पहले विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज अपने उद्घाटन संबोधन में कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है। उन्होंने बात नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ बैठक में कही। अमरीकी विदेश मंत्री 4 दिन की यात्रा पर कल भारत पहुंचे। वे 26 मई को क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग और जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोटेगी भी शामिल होंगे।

0: केंद्रों के बीच प्राथमिक क्षेत्रों में क्वाड सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतगणना जारी है। ताजा समाचार मिलने तक 16वें दौर में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा काफी आगे चल रहे हैं। उन्हें अब तक 76,397 वोट मिले हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी दूसरे स्थान पर हैं। कांग्रेस के अब्दुल रजाक मुल्ला तीसरे और तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान चौथे स्थान पर हैं। वोटों की गिनती 14 केंद्रों पर की जा रही है। मतगणना 21 चरणों में हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर देश में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी का बयान कांग्रेस और विपक्षी दलों की साजिश की ओर इशारा करता है। श्री गोयल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य देश को बदनाम करना, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना और विदेश जाकर विदेशी शक्तियों से भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की अपील करना है। मत्स्य पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन मंत्री राजीव रंजन सिंह कल मिजोरम के आइजोल में समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मछली पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन से जुड़ी योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में करस्योंग इकाई ने आज आकाशवाणी एच 90 मैराथन का आयोजन किया। करस्योंग के विधायक सोनम लामा ने मैराथन को रवाना किया। श्री लामा ने कहा कि आकाशवाणी की 90 वर्ष की अनवरत और गौरवशाली सेवाओं का स्मरण नेपाल और नेपाली भाषियों के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। 8 जून 1936 को स्थापित आकाशवाणी करस्योंग नेपाली भाषियों को लगातार शिक्षा, सूचना और मनोरंजन प्रदान कर रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा के परिणाम के संबंध में नई सूचना जारी की है। ये सूचना 21 और 22 मई को गलत फीस कट जाने को देखते हुए जारी की गई है। ये समस्या जांची गई उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई कॉपी के लिए आवेदन के दौरान हुई थी। बोर्ड ने कहा है कि कुछ मामलों में ज्यादा भुगतान काटा गया है जबकि कुछ मामलों में कम राशि ली गई है। सीबीएसई के अनुसार अतिरिक्त भुगतान के मामलों में राशि खाते में लौटा दी जाएगी। कम भुगतान के मामले में विद्यार्थियों को बाकी भुगतान के लिए अलग से सूचित किया जाएगा। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि उचित शुल्क वाले सभी आवेदनों के मामलों में उत्तर पुस्तिका उपलब्ध कराई जाएगी और विद्यार्थियों को नए सिरे से आवेदन नहीं करना होगा। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने टीसीएस कंपनी से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1,500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि 4 आरोपियों के खिलाफ कल अभियोग पत्र दाखिल किया गया। सरकार ने विकसित भारत जीरामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए प्रारूप प्रकाशित किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन और संस्था 21 जून तक प्रारूप के बारे में आपत्ति तथा सुझाव दे सकते हैं। अधिनियम में एक वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। इसके अनुसार निर्धारित समय में काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। भारत ने अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्रों को चिकित्सा सामग्री और सुरक्षा किट की पहली खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सामग्री उभरते इबोला संकट को देखते हुए भेजी गई है। उन्होंने कहा कि भारत इस संकट से निपटने में अफ्रीका का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। एक रिपोर्ट।
1: सरकार ने इन देशों में मौजूद भारतीय नागरिकों से भी स्थानीय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला को आपात स्थिति घोषित किया है। इबोला वायरस से फैलने वाला रोग है जिसमें बुखार और रक्तस्राव होता है। फिलहाल इसके लिए कोई टीका या इलाज उपलब्ध नहीं है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है।

0: पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में आज रेलवे लाइन पर हुए धमाके में 24 लोग मारे गए हैं और कई घायल हैं। यह धमाका राजधानी क्वेटा के चमन फाटक रेलवे स्टेशन के पास हुआ। धमाके में एक रेलगाड़ी को मामूली नुकसान पहुंचा और आसपास खड़ी 10 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। धमाके के बाद एहतियात के तौर पर पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को क्वेटा रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया। शहर के कई संस्थानों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि मलबे में दबे यात्रियों को अब भी निकाला जा रहा है। उत्तरी चीन में एक कोयला खदान में हुए धमाके में 82 लोग मारे गए हैं। शुक्रवार को धमाके के समय लगभग 247 श्रमिक ड्यूटी पर थे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने घायलों के इलाज और खदान में बचे लोगों की तलाश के लिए निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के शानशी प्रांत में खान दुर्घटना में मरने वालों के प्रति गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में चीन के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने लापता लोगों की तत्काल और सुरक्षित वापसी की कामना भी की है। भारत में चीन के राजदूत शिव फेईहुंग ने शानसी में खान दुर्घटना के मृतकों के प्रति संवेदना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। चीन के राजदूत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि दुर्घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य चल रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी के बाद त्वरित कार्रवाई के लिए अधिकारियों और सीक्रेट सर्विस एजेंटों को धन्यवाद दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर कहा कि संदिग्ध का हिंसक इतिहास था। पेरिस में फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के मुकाबले अब से कुछ देर में शुरू होंगे। पहला मैच 3 बार के चैंपियन सर्बिया के नोवाक जोकोविच और फ्रांस के जियोवानी पेत्री पेरिकार्ड के बीच होगा। आज ही अलेक्जेंडर ज्वेरेव और टेलर फ्रिट्स आमने सामने होंगे। विश्व के नंबर एक खिलाड़ी इटली के यानिक सिनर अपना पहला मैच कल खेलेंगे। पुरुष डबल्स में भारत के यूकी भांबरी न्यूजीलैंड के माइकल वेनस के साथ और एन श्रीराम बालाजी ब्राजील के मार्सेलो डेमोलिनर के साथ खेलेंगे। अन्य खेल खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा।
1: आईपीएल क्रिकेट में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मैच मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुंबई में दोपहर बाद 3:30 बजे से होगा। दूसरा मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच शाम 7:30 बजे से होगा। विजेता टीमों को प्लेऑफ में जगह मिलेगी। इससे पहले कल पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। उधर गुरविंदर वीर सिंह ने फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। उन्होंने नए राष्ट्रीय कीर्तिमान के साथ राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अनिमेश कुजूर ने रजत और प्रणव प्रमोद ने कांस्य पदक जीता है। इस बीच ईरान की फुटबॉल टीम ने फीफा विश्व कप के लिए अपना बेस कैंप अमेरिका से मैक्सिको ले जाने का फैसला किया है। इसके लिए उसे फीफा से मंजूरी भी मिल गई है। फीफा विश्व कप अगले महीने से शुरू होगा। बेस कैंप अमेरिका से हटाने का फैसला ईरान, अमेरिका और इसराइल के बीच बढ़ते भू राजनीतिक तनाव को देखते हुए लिया गया है।
0: विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक स्विट्जरलैंड के जिनेवा में संपन्न हो गई है। बैठक में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुपक्षीय सहयोग के लिए कई संकल्प लिए गए। बैठक में दिमागी दौरों, टीबी, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, आपातकालीन चिकित्सा, हीमोफीलिया, प्रिसिजन मेडिसिन और विकिरण से संबंधित निर्णय लिए गए। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि स्वस्थ समाज ही समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। आज सुबह गुजरात के अहमदाबाद में साइकिल दिवस और राष्ट्रमंडल दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा कि साइकिल चलाने से प्रदूषण के समाधान के साथ साथ ईंधन की भी बचत होती है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू चलने की आशंका व्यक्त की है। अगले 5 दिन तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और अमेरिका ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को महत्वपूर्ण बताया। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा शीघ्र व्यापार समझौता जरूरी, देश के लिए ऊर्जा आपूर्ति के विविधीकरण पर जोर। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र के पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देवांशु पांडा ने भारी बढ़त हासिल की। सरकार ने इबोला के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारतीय नागरिकों को कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: एते बळे जाय आपण माने कार्यक्रम सुनुथिले रिले करी प्रचार करुथिलो आकाशवाणी दिल्ली रो आकाशवाणी कटक समय दिन 2:00।

0: पशु पक्षी को अंशुघात रक्षा करने किसी उपाय
1: अंशुघात ना दिन एगारटू अपराह तीन टा पर्यंत टाण खरारे गृहपालित प्राणी मानंकु बाहर को न छाड़ी गुहाळरे किंबा छाई स्थान रे रखंतु।
0: पशु पक्षी को स्वच्छ थंडा पानी पीबा को दियंतु एवं प्राणी को विश्राम स्थान बा कोठरे जलकुंडर व्यवस्था करंतु।
1: गुहाळ कबाट ओ झरकारे ओदा अखा झुलाई मझिरे मझिरे पानी सिंचन करंतु।
0: बुला पशु ओ पक्षी को अंशुघातरु रक्षा करिबा पई घर आगरे जलकुंडर व्यवस्था करंतु।
1: अंशुघात हेले पशु पक्षी माने किछि खांति नाही, पाटी बाटे निश्वास नेबा सहित धक्के हुंती, पाटीरु ओ नाकपुडारु फेण बाहरे ओ समय समय जीभ पदा बाहरी आसे।
0: अंशुघात आक्रांत प्राणी को तुरंत थंडा छाई स्थान को स्थानांतरित करंतु। प्रचुर थंडा पानी पीबा को देबा सहित निकटस्थ प्राणी चिकित्सकंक सह परामर्श करंतु।
1: अधिक जानिबा पई टोल फ्री नंबर 1962 किंबा 155333 रे जोगाजोग करंतु।
0: मत्स्य ओ प्राणी संपद विकास विभाग, ओडिशा सरकार।
2: परवर्ती गीत कथचित्र क्रैक्रु कंठ देइछंती पेशाल मिश्र एवं श्रेया घोषाल। गीत रचना कुरप्रीत साइनी एवं अली जाफर। संगीत निर्देशना तन्निस पाक्ची एवं अली जाफर।

0: रीमा घरे सोलार लगे देल?
1: हाँ मधु अपा, एबे आउ बिजुली बिल पाई चिंता नहीं।
0: चिंता नहीं माने?
1: हाँ अपा, सोलार करी देले मास्टर को 300 यूनिट पर्यंत बिजुली बिल बंची जीवो।
0: सतरे?
1: खाली सेती की नुहा अपा, सौर शक्ति व्यवहार कले परिवेश भी सुरक्षित रहिबो।
2: आज्ञा हाँ, पीएम सूर्य घर योजना रे केंद्र और राज्य सरकार मोट 138,000 टंका पर्यंत सब्सिडी देउछंती। पीएम सूर्य घर .gov.in रे आज ही आवेदन करंतु।
3: कारवा कथाचित्ररु गीतटिकु कंठ देइछंती अरिजित सिंह, गीत रचना आकर्ष खुराना एवं संगीत निर्देशना अनुराग साइकिया।

0: पशु पक्षी को अंशुघात रक्षा करने कि उपाय
1: अंशुघात ना दिन एगारटू अपराह तीनटा पर्यंत टाण खरारे गृहपात प्राणी मानू बाहर को न छाड़ी गुहाल कि छाई स्थान में रखु
0: पशु पक्षी को स्वच्छ थंडा पा पीवा दिंतु एवं प्राणी विश्राम स्थान व गोठरे जलकुंडर व्यवस्था करतु
1: गुहाल कबाट और झरकार ओदा अखा झुलाई मझे मझे पा सिंचन करतु
0: बुला पशु और पक्षी को अंशुघात रक्षा करने घर आगे जलकुंडर व्यवस्था करतु
1: अंशुघात पशुपक्षी मैंने किसी खाती ना पटिटे श्वास नेबा सहित धके हुंती पाटीरू और नाकपुडारू फेण बाहरे और समय समय जीभ पदा को बाहरी आसे
0: अंशुघात आक्रांत प्राणी को तुरंत ठंडा छाई स्थान को स्थानांतरित करंतु प्रचुर ठंडा पानी पीवा को देबा सहित निकटस्थ प्राणी चिकित्सकों सह परामर्श करंतु
1: अधिक जानिबा पाई टोल फ्री नंबर 1962 किंबा 155333 रे जोगाजोग करंतु
0: मत्स्य और प्राणी संपद विकास विभाग ओडिशा सरकार
2: रोमियो अकबर वल्टर रो कथाचित्ररु कार्यक्रमर परवर्ती गीत कण्ठ देछन्ति मोहित चौहान संगीत निर्देशना राज आसु गीतटिकु लेखिछन्ति अगरवाल सबीर।

0: हेलो अनुरोध आपण मानको मन पसंद कथाचित्र गीतर कार्यक्रम हेलो अनुरोध
1: हेलो जुहार आज्ञा किए कहते आपण परिचय श्रोता मानक देवे जाऊ आपण फोन टा आज पहला पहला लगी जाए आज्ञा
2: बहुत खुशी
1: आ केनता अछन आपन
2: हां बहुत बढ़िया आछी आ तो बर्तन में चलती मते आइसक्रीम तार भले बाबू जा खुशी रिच आछी
1: हां एछन तो आपन कर जोरदार गरम माने आइसक्रीम व्यापार चलवा ही चलवा
2: आ
1: गया आपन को सुहेई छे बोलन तो ई गरम टा
2: हां अबे चार पांच दिन बहुत गरम दिख लागो छ कि देह दिख पड़ी जाउ खराब आ
1: हाँ परे पानी पाग विभाग रा जेंटा ता माने आकलन छे जे बहुत गरम रहबा ई वर्ष बोली सुपर एल निनो आउछे बोली तो आज केन गीत सुनमा गया

0: राजा बाबूंकर जेत्ते बेले देखिबो घरे एसी फ्यान सबु चलिथिबो।
1: ओहो मा, तमरो प्रति कथा रे टेंशन।
0: इलेक्ट्रिक बिल केते आसुछि जानिछु?
1: देखो मा, घरे सोलार लगे देले चिंता जिवो।
0: हां, सेटा जमिति मागणा रे हे जिवो।
1: जानिनो कि सरकार पर एथि पे सब्सिडी देउछंती?
2: आज्ञा हां, पीएम सूर्य घर योजना रे केंद्र और राज्य सरकार मोट 138,000 टंका पर्यंत सब्सिडी देउछंती। pmsuryaghara.gov.in रे आज ही आवेदन करंतु।
3: हेलो, हां आज्ञा, आकाशवाणी संबलपुर, हेलो, अनुरोध कार्यक्रम।
4: नमस्कार।
3: नमस्कार, किए कहतिले आपनकर परिचय हम श्रोता मानकु देबे?
4: हां मैम, दिस इज मामा मिस्टर फ्रॉम भुवनेश्वर। मैम भुवनेश्वर रे कहउछी।
3: भुवनेश्वर रे कहउछंती?
4: यस मैम, एते भल पाउछी आपनकर प्रोग्राम तो आपनकु गरम रे हम सिजी के तरकारी हेतलो ने सबै फोन करछी।
3: आमे भी बसी छु आपण मानकर फोन नेबार लागि। आज्ञा
4: मैम, गोटे कविता कहिबी, शायरी शायरी।
3: आ प्रथमे कहि दियंतु कोउ पिक्चर रो आज गीत सुनिबे?
4: मैम मते हम भाई पई मो फॅमिली पई रक्षाबंधन रो गीत बजे देबे।
3: अच्छा, श्रोता मानकु कहि दियंतु आपण कोण करंती?
4: मु मैम एबे ममता मैम से कथा होची, तापरे मु गीत सिखे, तापरे मु कविता लेखे, शायरी लेखे, आ मु एबे एमबीए पाठ पढुची, आधारु छाड देथिले रे आउथरे कंटिन्यू करची।
3: एमबीए के
4: आपनकर बेरे बेरे चॅनल सुने, तापरे मम्मी डॅड मम्मी को टिके टिके बेरे बेरे
3: हाँ निज लगे फ्री टाइम बाहर कर सब बड़ कथा।
4: अच्छा मंजिल पाओ, रास्ता हम बनाएंगे, मन तुम रहो, खुशियाँ हम दिलाएंगे, दोस्त बन के रहो, बस दोस्त बन के रहो, दोस्ती हम निभाएंगे।
3: बहुत बढ़िया कथा, एटा गुटे तमने छुआ पाई माँ बापा पाई गुटे बहुत बड़ा जिनस।
4: अच्छा आज्ञा मैम,
3: एटा माँ बापा पाई उद्दिष्ट नाई कि? स्वप्न देखिबे पूरा करिबा आपनकर कर्तव्य। माँ बापा सब चाहेसन केन्ता करी मोर छुआ भल हो। एमबीए करुछन हला? बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन रे जेंटा काम करुछन आपनकर सेथि लागि भल मुनसट हेबार बहुत दरकार।
4: आज्ञा मैम, भल मनिष रहिया दरकार, आ मनिष मानक पई मनिष पणिया रहिया निहाती दरकार, जहाँ पके मनिष पणिया अछि से ही महान अछि। मैम
3: आपन मोर भाषा बुझि पारुछन त?
4: हां मैम, संबलपुर हमर पाखा पाखि मिथा, आपन जदि मो कथा बुझि पारतनी मो कहि बुझि परबिनी, अरे केही काको देखिले किनु दिल्ली दिल्ली कनेक्शन।
3: सेटा बढ़िया कथा।
4: आज्ञा मैम,
3: आपण तो बहुत सुंदर गीत टे बाछी छन, रक्षा बंधन रो बाछी छन। धन्यवाद मते डेडिकेट करी छन, आ हमर कार्यक्रम आपनकर फैमिली निश्चय सुनुथिबे। फिर फोन कले फिर कथा हेमा, आपनकर भविष्य उज्ज्वलमय हो, ई कामना संगे आपनकर पसंद रो गीत टा सुनमा।
4: नमस्कार मैम, रहली।
3: नमस्कार।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: हेलो
2: बहन जी, आपको और सभी सुनने वाले श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
1: हाँ जी, आप कहाँ से बोल रहे हो और आपका परिचय दे दीजिए हमारे सुनने वालों को।
2: बहन जी, मैं बस स्टैंड मानसा पंजाब से जगदीश राय गर्ग बोल रहा हूँ।
1: पंजाब से आप बोल रहे हैं?
2: हाँ जी बहन जी, पंजाब से बोल रहा हूँ।
1: आप हमारे कार्यक्रम सुनते हैं?
2: हाँ बहन जी, कभी कभी सुनते हैं क्योंकि चैनल बहुत हो गए हैं तो थोड़ा थोड़ा समय कभी किसी चैनल को कभी किसी चैनल को ऐसे सुनते रहते हैं।
1: तो फिर आकाशवाणी संबलपुर का कार्यक्रम आपको कैसा लगता है जो भी सुनते हैं?
2: बहुत बढ़िया बहन जी, बहुत बढ़िया लगता है।
1: बहुत बढ़िया लगता है।
2: हाँ जी हाँ जी।
1: तो आप तो मतलब सोने की नगरी बोल रहे हैं वहीं से? स्वर्ण मंदिर की नगरी, गुरु जी
2: के दूध की नदियाँ भी कह सकते हैं।
1: हाँ, गुरु नानक की नगरी से बोल रहे हैं आप?
2: हाँ जी हाँ जी, जहाँ दूध मक्खन पेड़ा दही लस्सी सब कुछ बहुत ही मिलता है।
1: तो फिर आज कौन सा गाना सुनेंगे?
2: बहन जी आज मैं सुनूंगा फिल्म नीला आकाश का गीत और आशा जी और रफी जी का गाया हुआ है, थोड़ा सा उसकी दो लाइनें मैं गुनगुना के बताना चाहूंगा।
1: जी बहुत बढ़िया, आप बहुत सुंदर गाना पसंद किए हो। तो

0: बहुत बढ़िया। तो आपका पंजाब के बारे में कुछ बताइए हमारे श्रोताओं को, कैसा मौसम चल रहा है?
1: जैसे
0: वहां का
1: पहले भी
0: मक्खन?
1: आपने जिक्र किया कि जहाँ का मक्का की रोटी, सरसों का साग, मक्खन का पेड़ा,
0: जी
1: लस्सी, दूध, दही, और जहाँ गुरुद्वारे हैं गुरुओं के, वो दर्शन करने के लिए जैसे अमृतसर है, वहाँ दुनिया भर के आते हैं और नतमस्तक होते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। और हमारे पास भी बठिंडा जिला में दमदमा साहब, वो भी एक तीर्थ है गुरुओं का,
0: जी
1: वहां भी लोग बहुत जाते हैं। और वैसे जहाँ के लोग खूब तगड़े होते हैं, तो खाते पीते हैं, चिंताओं से मुक्त हैं, सभी किस्म के मौसम जहाँ होते हैं, गर्मी भी बहुत होती है और सर्दी भी बहुत होती है।
0: जी अगस्त में अगर चलेंगे तो गर्मी का बोलबाला होता है। नहीं, अभी तो अभी जो गर्मी है उसी से भी ज्यादा लगता है अगस्त के महीने में।
1: उसके
0: हाँ,
1: बाद बरसात वगैरह शुरू हो जाती है,
0: और
1: तो फिर थोड़ी सी राहत मिल जाती है।
0: अक्टूबर अक्टूबर में थोड़ा सा ठंड हो जाता है।
1: हाँ, मौसम
0: लेकिन
1: बदल जाता
0: उससे
1: है, थोड़ा
0: पहले
1: थोड़ा
0: जो
1: बदलने
0: गर्मी
1: लगता
0: होता
1: है, फिर
0: है,
1: दिवाली आ जाती है तो थोड़ा थोड़ा ठंड हो जाता है।
0: जी वहां पे जो भी जाए वहां का खाना खा के पूरा तगड़ा ही हो जाएगा।
1: आप भी कभी उधर आओ
0: जी
1: तो
0: हम गए
1: देखो
0: हैं,
1: पंजाब के नजारे।
0: हम गए हैं जी, पंजाब में गए हैं।
1: अच्छा, फिर तो बहुत अच्छी बात है, आपने देखा पंजाब।
0: हाँ, वहाँ का क्रॉस लाइन भी देखे हैं, पाकिस्तान का बॉर्डर जो वहाँ पे जो होता है ना, वो कार्यक्रम भी बहुत बढ़िया। पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर में जो जो मार्च होता है, जो फ्लैग निकालते हैं, वो वाला देखने में बड़ा मजा आता है। हाँ, वाघा बॉर्डर का बात
1: हाँ हाँ
0: और
1: बाकी जहाँ का सारा ही वातावरण भी बहुत बढ़िया है जी, तो खूबसूरत लोग हैं, मीठे बोलने वाले लोग हैं,
0: जी
1: मीठी
0: बढ़िया।
1: बोली है और बढ़िया पहनावा है, हर
0: हाँ,
1: चीज यहाँ की पंजाब की बहुत बेहतर से बेहतरीन है।
0: वो गुरुद्वारा में जो होता है खाना ना, उसका
1: हाँ, वहां
0: मतलब
1: तो लंगर चलता ही रहेगा, चौबीस घंटे लंगर चलता है, फ्री लंगर चलता है।
0: लंगर का खाना बहुत बढ़िया।
1: हाँ, जब भी कोई भी आ जाए गुरुद्वारे में तो उसको खाना तो मिलेगा ही मिलेगा।
0: हाँ, बहुत बढ़िया। तो आप बहुत बढ़िया गाना पसंद किए हो, फिर जब फोन करेंगे तो बात करेंगे। अभी आपका पसंद का गाना सुने।
1: ठीक है बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: धन्यवाद।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: हेलो हेलो, ये गौतले आपण पाखे बोधे रेडियो बाजुचे टिके साइट कर दउन। फोन स्पीकर रे अच्छी क्या आपण को? हेलो हाँ आज्ञा आपण को नाटा आउ थे कहतु टिके तमने सुभिला नी भल करी तो
2: सुनीता पुष्टि जते परे हम चिलो को कटक रु कहो।
1: अच्छा कटक रु कहो छन आपण?
2: आज्ञा आज्ञा।
1: आज के
2: आज के तो जने रे आपण को कटक रु कटक रु सिक सुन देले आपण ने लगे आपण
1: को दिला तुम्हारा रो सुनबे।
2: आज्ञा आज्ञा।
1: अच्छा आ आपण काना फोन करितले आगरु ना आपण कथा हितना आमे
2: आगरु देखे फोन दे देली ये मोर कार्ड आगु कते देर फोन लगे कि काय फोन देला लागो नाही गेले शनिवार गदा लगे नी फोन लागलानी आ आज लगेली बहुत अदाटा पारे फोन मोर लागे बहुत माने 5 एपिसोड पारे मोर फोन लागला
1: जा भी हो।

0: हेलो।
1: हाँ हेलो।
0: हाँ या आकाशवाणी संबलपुर, हेलो अनुरोध कार्यक्रम।
1: हाँ नमस्कार आज्ञा।
0: नमस्कार,
1: नमस्कार,
0: किए कहुतले आज्ञा?
1: मुई लोकनाथ प्रधान कहुतली पत्रापल्ली पदमपुर जिला बरगढ़ रो।
0: जाओ आज्ञा, बरगड़ू आ गुटे फोन आसला आज तमने सखालू हैला न कटक गंजाम पंजाब बहुत फोन आइला न आ हमर तमने संबलपुर बरगढ़ रो आपण दुई नंबर आ लास्ट कलर। नाई किंतु बहुत भल लागुचे जे देखुन सारा भारत रु लोक फोन करुछन आज्ञा सुनिकरी कार्यक्रम सुनिकरी फोन करुछन माने सेमाने निश्चय हमर आकाशवाणी संबलपुर के सुनुछन आज्ञा सेटा हमर गर्व आ गौरव है। आमे हमर पाखटा सेना सुनमा।

आपण माने सुनुचन हिंदी कथा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो अनुरोध उपस्थापना दायित्व ती मुई ममता पंडा वैषयिक सहायता सत्यरंजन पंडा आउ आशीष कुमार साहू ई कार्यक्रम थी आपण मानक निजर पसंदर गीत सुनबार लागि आमन के फोन करून सबु शनिवार रविवार सकाळ 9 बजे 10 बजे भितरे आमको जोगाजोग करबार लागि आमर केन्द्रर फोन नंबर दुईटा हैला 0663241240 आउ 0663241231 सुनबा के भूलबे नै आपनकर पसंदर कार्यक्रम हेलो अनुरोध।

0: one they like jota 25 jona athlete seven of them are national awardees and one of them comes from a family of national awardee so that was also pride for us ki se asle ama college ko se sikhi bi sikhya chau chan se bi kahi leke amar kon kon problem hochi second kon impact hela ki now they have their own logo so we focused on branding part also ki tanko kemti nijo brand develop tapa tanko social media marketing ame korelu we ensured that they have their instagram accounts they have their facebook accounts and they go for whatsapp marketing So that is how this IIM, which I can claim being a student of this IIM, is different from the other IIMs because we as an institute, as we say, Indian Institute of Management. So we as a student of management, we try to manage our education also. We try to manage our academic life also, along with making sure that our college is rising every day with every event going on.
1: आमे भी आशा करुछु आगरे एमती आपनकर कार्यक्रमटा चालू थिबो आउ आपन जो स्टार्टअप माइंडसेटअप जो क्रिएट करचंती सेटाकु समस्त आपणेबे आउ आगकु से माने निजे ताकु सेल्फ डिपेंडेंट हेबे अन्य लोकंक पई भी से माने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करि पारिबे
0: यस
1: ओके थैंक यू सो मच
0: थैंक यू सो मच
1: एबे वर्तमान आसीबा आमे पाठ्य कार्यक्रम व्यतीत से माने आउ कोन करुछंती ए जगारे डिफरेंट तांकर क्लब्स गुडाक सोसाइटी अछि जे तांक विषय रे आमे कथा हेबा आम सहित जने अछंती छात्री तांक परिचय प्रथमे नेबा मैम आप पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए
2: जी बिल्कुल सो आई एम वर्णिका खरे आई एम अ फर्स्ट ईयर एमबीए स्टूडेंट हियर एट आईएम संबलपुर एंड आई एम अ पार्ट ऑफ द स्टूडेंट अफेयर्स काउंसिल सो स्टूडेंट अफेयर्स काउंसिल एज द नेम सजेस्ट इज अ काउंसिल ऑफ द स्टूडेंट्स एंड वी एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द स्टूडेंट्स एंड द एडमिनिस्ट्रेशन
1: ओके सो व्हाट सॉर्ट्स ऑफ एक्टिविटी डू यू परफॉर्म हियर
2: सो अंडर स्टूडेंट्स अफेयर्स काउंसिल वी कॉल इट सैक इन शॉर्ट सो मेनली आवर स्कोप ऑफ वर्क इंक्लूड्स taking the grievances and issues of the students and taking them up to the admin and coming up with solutions and implementing new things to make the experience of students more enriching here on campus.
1: So coming to part of the clubs you are saying, so what are the different clubs do you have in this particular IIM campus?
2: Okay, so there are first of all, as we are the council, student affairs council, then we have two categories.
1: Okay.
2: One is clubs and one is committees. So committees are contains different parts where students manage different things. For example, there's an academic committee. So academic committee is responsible for the taking care of the curriculum. They sit with the professors and they also contribute in designing the curriculum so that they know what the students want and so that they can pitch in. Other than that, they regulate the day-to-day classes that we have and they act as a liaison between the professors and the students. And other than that, we have other committees like Alumni Affairs Committee. It deals with the alumni, the students who have passed from our college. Then we have committees like Industry Relations Committee and Infrastructure and Mess Committee. And as the name suggests, they deal with their respective fields.
1: Okay.
2: We have another prominent committee here, that is the Cultural Committee. It's called Kalakriti. So coming to the clubs, the clubs are informally divided into two categories. One is technical and non-technical. So technical clubs include clubs related to fields that are also part of our curriculum. So for example, we have Alpha Beta, the product management club, Beers and Bulls, the finance club, Consiglio, the consulting club, Emporia marketing club, and so on. And the non-technical clubs are more of the kind that address to interests of students like drama club. We have Natya Rang. Then there's Illuminati. It's the literary club of IIM Sambalpur. Then we have Magnum Opus, the art club, Pixel. It's the photography club and so on. And we have a new club coming up. It's called Neeti. It's a public policy club. One of the major thing about all these clubs and committees and the council is that it's run completely by the students.
1: So आपसे बात करके बहुत खुशी हुई बहुत जानकारी हमें मिली और उम्मीद करते हैं कि हमारे जो श्रोता हैं उन्हें भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस कैंपस के बारे में ओके थैंक यू श्रोता बंधु ताहले एबे आसंतु ए कैंपस विषय रे तो आमे बहुत कथा जानिले एबे जानिबा ए कैंपस रे जणे एडमिशन करबा को चाहूचंती त से किपरि भाबरे से एडमिशन करिवे आमो सहित जणे बंधु अछंती तांको परिचय प्रथमे नेबा सर आप अपना पहले इंट्रोडक्शन दीजिए
3: जी शुक्रिया मेरा नाम मानस अग्रवाल है मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूँ एंड आई एम एन इंजीनियर बाय प्रोफेशन मेरा एक साल का वर्क एक्स है आईटी कंपनी में एंड आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर कैट पैरेलली व्हाइल वर्किंग
1: ओके सो पर्टिकुलरली अगर यहाँ आईआईएम में एडमिशन लेना है सो कैट इज कंपलसरी तो इसमें कितना आपको स्कोर करना पड़ेगा आई थिंक देयर इज द परसेंटाइल सिस्टम हियर
3: करेक्ट
1: तो वो बताइए यहाँ पर एडमिशन करने के लिए क्या परसेंटाइल लाना है कैरियर मार्किंग कितना होना चाहिए किस तरह से का सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है यहाँ पर
3: जी, आईआईएम्स में एंट्री के लिए एक अच्छा स्कोर लाना बहुत इम्पोर्टेंट है, बट उसके साथ साथ आपका प्रोफाइल भी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और इसके में कई सारे क्राइटेरियाज इन्वॉल्व हैं, जैसे कि 10th 12th के मार्क्स, आपके
1: यस
3: अंडर ग्रेजुएशन की डिग्री किस में है, कि आप साइंस में हैं या आप कॉमर्स में हैं, आप आर्ट्स में हैं, आपका कैट परसेंटाइल, फिर आपका वर्क एक्सपीरियंस कितने साल का है, आपका आपका जेंडर, आपका डेमोग्राफिक्स, आपका रिलीजन्स का, सब उसमें इन्वॉल्व होती है। और हर पैरामीटर पे एक स्कोर मिलता है।
1: अच्छा, मतलब हर एक कैटेगरी के लिए अलग अलग मार्किंग होता है।
3: हाँ, करेक्ट।
1: तो अभी आते हैं कैट प्रिपरेशन में, तो कैट जो कैट एग्जाम होता है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट एरियाज होते हैं उसमें?
3: सो कैट में बेसिकली तीन सेक्शन होते हैं, एक
1: ओके okay.
3: वीआरसी, एक डीएलआर और एक क्यूए। तो वीआरसी मतलब ये आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, और डीएल मतलब डेटा इंटरप्रेशन और लॉजिक रिलीजिंग, और क्यूए मतलब क्वांटिटेटिव एबिलिटी।
1: ओके
3: तो वीआरसी में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको रोज न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, न्यूज़पेपर, आर्टिकल्स, एसेज, जितना आप पढ़ेंगे और उतना आपका पर्सपेक्टिव बढ़ेगा और उतना आपको एग्जाम में हेल्प होगी। डीएलआर सबसे ट्रिकी सेक्शन माना जाता है कैट का, तो उसमें आप जितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाए उतना हेल्प होगा। आप कैट में बेसिकली चार क्वेश्चन आते हैं जनरली, जो
1: अच्छा
3: पैटर्न अभी तक चल रहा है, अगर आप उसमें से दो क्वेश्चन भी पूरे कर लेते हैं तो आप 90% के ऊपर खड़े होंगे। तो
1: अच्छा
3: सेलेक्टिंग द राइट क्वेश्चन, सॉल्विंग देम एक्यूरेटली इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट डीएलआर।
1: ओके
3: और क्वांट के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी स्पीड पे ध्यान दें, क्वांट को करने की काफी ट्रिक्स होती हैं, अगर आप उस ट्रिक्स को आप क्रैक कर लेंगे तो आप क्वांट को भी एस कर सकते हैं, तो आप काफी अच्छी स्टेट में होंगे कैट करने की।
1: ओके ठीक है सर, आपसे बात करके बहुत खुशी हुई, थैंक यू।
3: बहुत बहुत शुक्रिया।
1: तो बंधु, भारत सरकार तरफ रु गोटे इनिशिएटिव निया हेछि जहाँ को कहुच युवा संगम, तो आसंतु ए विषय आम कथा हेबा। आम सहित जने अछंती छात्री, तांको परिचय प्रथमे नेबा। हेलो मैम, पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए।
4: Hi, I'm Shreya Maheshwari. I am originally from Agra, Uttar Pradesh.
1: ओके सो ब्यूटीफुल, यू आर फ्रॉम द सिटी ऑफ लव, आगरा। ओके सो अभी आप बताइए युवा संगम के बारे में, तो युवा संगम क्या है?
4: तो युवा संगम एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव है, जहाँ पे गवर्नमेंट एम करती है कि पीपल टू पीपल कनेक्ट हो यूथ का, हु आर फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। दे जस्ट वॉन्ट द यूथ टू अंडरस्टैंड, टू नो द डाइवर्स कल्चर्स। तो हर साल दे पेयर अप वन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी विद द अदर, और दोनों के बच्चे एक दूसरे के जगह जाते हैं। तो फेज थ्री में IIM संबलपुर ने होस्ट किया था, जहाँ पे हमारा पेयर अप हुआ था केरला के साथ। तो हम लोगों ने 45 केरला डेलीगेट्स को होस्ट किया था यहाँ पे, हम लोग भी फिर उसके बाद वहां गए थे जहाँ पे NIT कैलिकट ने हमें होस्ट किया था।
1: अच्छा, तो केरला भी तो बहुत कल्चरली रिच स्टेट है हमारे इंडिया का, कोडियाट्टम, कथकली, ये सब होता है, आप वो सब देखा आपने?
4: जी हाँ, हमें वहाँ के सारे फॉर्म्स ऑफ आर्ट और रहन सहन ये सब दिखाया गया था। वहां पे जिस तरह से बैंड बजाया जाता है,
1: यस
4: उससे हमारा स्वागत भी हुआ था, तो वो सब हमने एक्सपीरियंस किया अपने जर्नी के थ्रू।
1: उसके बाद फिर यहाँ जब वो लोग संबलपुर आए होंगे तो यहाँ का संबलपुरी बैंड एक अलग
4: एग्जैक्टली
1: है।
4: यहाँ पे हम लोगों ने उन्हें संबलपुरी डांस दिखाया था,
1: यस
4: यहाँ से हम उन्हें पुरी दर्शन के लिए भी लेके गए थे, भुवनेश्वर में भी उन्हें घुमाया था, तो
1: यस
4: उन्होंने यहाँ के बारे में भी जाना था।
1: बहुत बढ़िया, कि अगर देखा जाए तो अलग अलग स्टेट जो हैं सबके कल्चर अलग अलग हैं और सब इस तरह से मोतियों की तरह बिखरे हुए हैं, तो अभी जो
4: एग्जैक्टली
1: सरकार के जो ये इनिशिएटिव हैं एक धागे की तरह काम कर रहा है, जो उन्हें सबको पिरो कर एक अच्छे सुंदर माला तैयार किया जा सके उससे।
4: एग्जैक्टली
1: सो आपसे बात करके बहुत खुशी हुई, बहुत जानकारी मिली हमें आपसे, उम्मीद करते हैं हमारे श्रोताओं को भी बहुत कुछ जानने को मिला। ओके थैंक यू।
4: थैंक यू।
1: तहले श्रोता बंधु, आपण सुनिथिबे G20 समिट कथा, ता मध्यरे G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट प्रोग्राम हेतिला, तो एथिरे भारतर समस्त यूनिवर्सिटीर छात्र माने सेथिरे भागीदार हेतिले, ता मध्यरे जने भागीदार हेतिबा IIM संबलपुर छात्र आम सहित अछंती, से निज अनुभव आम सहित शेयर करिवे, आसंतु तांको सहित आमे कथा हेबा। नमस्कार सर, पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए।
5: नमस्ते, मेरा नाम विपुल शर्मा है, मैं यहाँ IIM संबलपुर का छात्र हूँ, एंड आई एम फ्रॉम उदयपुर राजस्थान, एंड आई एम करेंटली स्टडिंग इन फर्स्ट ईयर ऑफ द कॉलेज।
1: G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट प्रोग्राम जो है, आप उसके हिस्से थे, आप उसके उसमें गए थे, आप भागीदार हुए थे, तो क्या आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा था, क्या क्या हुआ था एक्टिविटी, वो थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए।
5: G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट जो प्रोग्राम था, इट वॉज स्पेनिंग अराउंड फॉर 100 यूनिवर्सिटी, और उसका ऑब्जेक्टिव ये था टू एंगेज यूथ इन G20 प्रेसिडेंसी ऑफ इंडियाज प्रेसिडेंसी, और जो भी हमारा पार्टिसिपेशन बढ़े और हमारा एंगेजमेंट बढ़े। initially RIS was the organization event which is under Government of India, and they came in to our campus to engage in the events of G20 events and how well aware we are. और उसका जो फिनाले हुआ था दैट वॉज इन दिल्ली एंड हैपेंड एट भारत मंडपम एंड वी हैड द चांस टू सी आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ओवर देयर.
1: बहुत बढ़िया. तो आपको वहां जाकर कैसा लगा? तो हमारा जो अगर देखा जाए फ्यूचर पर्सपेक्टिव अगर देखा जाए इंडिया का, तो इससे क्या लगता है, मतलब ये कितना दूर तक सक्सेस हो पाएगा?
5: रही बात सक्सेस की, तो अभी जिस तरीके से जो ये इवेंट का स्टार्ट हुआ और जिस तरीके से एंगेजमेंट देखा गया यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स का, उसके बेसिस पे हम ये पॉजिटिवली कह सकते दैट इट विल बी अ सक्सेस एज वेल एज इट वॉज अ फ्लैगशिप इवेंट मार्क्ड एंटायर ग्लोब. तो फिर ये कि पूरा ग्लोबल प्रेजेंस का भी हमने एक नाम निशान छोड़ा है विद दिस इवेंट विच हैज हैपेंड. और अच्छी बात ये थी कि वी एज अ ग्रोइंग कंट्री वी हैव यूथ रिप्रेजेंटेशन मच, तो उन्होंने हमारा एंगेजमेंट लेकर के इस चीज को और आगे बढ़ावा दिया कि हम इस चीज को आगे लंबे सफर तक लेके जाए.
1: जरूर जरूर, क्योंकि सारी जिम्मेदारी जैसे हमारे घर की भी हो, जिम्मेदारी यूथ पर ही होती है, जवान लोगों के कंधे पे होती है
5: जी.
1: तो ये काम तो बहुत अच्छा किया नरेंद्र मोदी जी ने कि देश का जिम्मा है जो हमारे यूथ के, हमारे युवाओं के ऊपर उन्होंने रखा है. तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में सब कुछ सही रहे और भारत आगे बढ़कर टोटल वर्ल्ड को लीड करे.
5: जी बिल्कुल बिल्कुल
1: जी. बहुत बहुत शुक्रिया कि जो आपने हमें महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार.
5: थैंक यू सो मच. नमस्कार.
1: ତାହେଲେ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଆଇଆଇଏମ୍ରେ ଜଣେ ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ତ ତା ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କ'ଣ ସ୍କୋପ୍ ଅଛି, ସେ ଆଗକୁ ଯାଇକି କ'ଣ କରିପାରିବ, ତା ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ଫିଲ୍ଡରେ ସେ ଜବ୍ କରିପାରିବ, ବା ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଆମେ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଆମେ କଥା ହେବାକୁ ଆମ ସହିତ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଛାତ୍ରୀ, ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ପ୍ରଥମେ ନେବା. ନମସ୍ତେ ମ୍ୟାମ୍. ସୋ ପହେଲେ ଆପ ଆପନା ପରିଚୟ ଦେଇଯିଏ.
6: Hello sir, I am Shweta Mahuri from the placement committee of IIM Sambalpur. So I am from Hyderabad and I am here as a first year student abhi TGP mein.
1: ओके. सो आप बताइए प्लेसमेंट में आप जो हैं यहाँ पर, मतलब आप रिप्रेजेंट कर रही हैं स्टूडेंट्स को
6: जी.
1: तो क्या क्या प्रोविजन है यहाँ, मतलब यहाँ पर जो अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ता है तो प्लेसमेंट कब से शुरू होती है, कौन कौन से जगह में उनके पास स्कोप है जाने का?
6: तो सर हम लोग जैसे ही एंट्री हो जाते हैं लाइक द कैंपस में, तो सपोज जुलाई से हमारा समर प्लेसमेंट्स चालू हो जाता है एंड जून से फाइनल प्लेसमेंट्स चालू हो जाता है. तो यहाँ पर हमारे पास हर एक एनर्जी ने तो कंसल्टिंग फाइनेंस हर एक सेक्टर से वी हैव पीपल हु कम इन फॉर रिक्रूटमेंट्स. बट हमारे तरफ से व्हाट प्लेसमेंट कमिटी डज इज कि जो वी हैव एक्सपीरियंस फ्रॉम द अदर सेक्टर्स एज इन द प्रोफेशनल स्कोप, वी ट्राई टू ब्रिज द गैप बिटवीन देम एज वेल एज द स्टूडेंट्स. वी ट्राई टू मेक श्योर कि हम लोग उनको यहाँ लेके आए ताकि बच्चे हमारे उधर काम कर सके. तो ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम दिस हम लोग ऑलराउंडिंग डेवलपमेंट के लिए कंपनीज को बुलाते हैं, गेस्ट लेक्चर्स होता है, लीडरशिप टॉक्स होता है, ताकि बच्चे उनसे सीख सके कि कॉर्पोरेट में जाके होता क्या है.
1: अच्छा, आप जैसे बता रही थी आप कि यहाँ पर जैसे डिफरेंट कंपनीज होते हैं तो उनको वो खुद आकर यहाँ पर अप्रोच करते हैं या फिर आप उन्हें एप्लीकेशन देते हैं कि प्लीज कम टू आवर इंस्टीट्यूशन टू गेट some people.
6: Right. So sir, अभी because हम अभी भी एक baby IIM है and I think this is the 9th year of the establishment. तो ऐसा भी होता है कि there are companies which approach us. There are companies who are already our league recruiters. तो हमें उनके पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती है. They know that we have a brand here. They know कि बच्चे अच्छे perform करते हैं because हमारे alumni उधर हैं. तो दे कम ऑन देयर ओन. इट्स लाइक इट गोज बोथ वेज. अगर हमें कोई नई कंपनी को लेके आना है तो क्योंकि बेबी आईएम है हमें खुद जाना पड़ता है एक बार. लेकिन अगर ऐसा है कि कंपनी बहुत अच्छा है और हमारे साथ काम कर चुका है देन दे देमसेल्व्स कम टू अस.
1: ओके. तो आप आते हैं पर्टिकुलरली आपके ऊपर, तो आपका रोल क्या है यहाँ पर, आप क्या करती हैं यहाँ पर एज ए प्लेसमेंट कमिटी मेंबर जो हैं, तो आपका बेसिक रोल क्या है यहाँ पर?
6: तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अभी बच्चे जो भी आते हैं वो या तो फ्रेशर्स होते हैं या वर्क एक्स के होते हैं. तो व्हाट वी डू इज वी सॉर्ट आउट देयर रिज्यूमेस. एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है जो आईएम्स का होता है. वी ट्राई टू मेक श्योर कि सबका सेम फॉर्मेटिंग हो ताकि देयर इज नो डिस्क्रिपेंसी और देयर इज नो डिस्टर्बेंस बिटवीन पीपल. वी डू दैट. अपार्ट फ्रॉम दैट एवरी वन इज फ्रॉम अ डिफरेंट ब्रांच, एज इन कोई हो गया आर्ट्स बैकग्राउंड का, कोई साइंस का, कोई
1: इंजीनियरिंग
6: का. हाँ, तो बिकॉज ऑफ दैट सबका अलग अलग स्कोप होता है, सबका अलग अलग मेंटालिटी होता है. वॉट वी ट्राई टू डू इज हमारा एक एक ही लेवल पे हम लोग अंडरस्टैंडिंग पे आते हैं कि सबको ये सीखना है. वी ट्राई टू मेक श्योर कि क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो सभी के लाइक एवरी वन इज यूज टू दैट. ऑल्सो वी कंडक्ट ग्रुप डिस्कशंस, नहीं तो इंटरव्यू राउंड्स, जैसे मॉक जीडीज होते हैं, वी ट्राई टू कंडक्ट ऑल ऑफ दैट सो दैट स्टूडेंट्स आर अप टू द मार्क व्हेन इट कम्स टू द एक्चुअल इंटरव्यू प्लेसमेंट्स एंड ऑल ऑफ दैट. तो वी ट्राई टू ब्रिज द गैप बिटवीन प्रोफेशनल स्कोप एंड स्टूडेंट स्कोप.
1: ओके, थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत खुशी हुई.
6: थैंक यू सो मच सर, नाइस मीटिंग यू.
1: ତାହେଲେ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା. ସେ ଆମକୁ ବତେଇବେ ଏ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କଲଚରାଲ ସୋସାଇଟି ଅଛି, କଳାକୃତି, ତା ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା. ହ୍ୟାଲୋ ମ୍ୟାମ୍, ଆପ୍ ଆପନା ପହଲେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଦେଇଛି.
7: ଓକେ, ସୋ ହ୍ୟାଲୋ, ଆଇ ଆମ୍ ତନ୍ଵି ସୁନାବନି ଆଣ୍ଡ ଆଇ ହାଭ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍ ମାଇ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ମୁମ୍ବାଇ ୟୁନିଭର୍ସିଟି. ସୋ କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍ ମାଇ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଇନ୍ ଫ୍ରମ୍ ମୁମ୍ବାଇ ଆଣ୍ଡ ନାଓ କରେଣ୍ଟଲି ଆଇ ଆମ୍ ସମ୍ବଲପୁର ପର୍ସୁଇଂ ମାଇ ଏମ୍ବିଏ. ସୋ ୟା, ଦାଟ୍ସ ଅଲ୍ ଆବାଉଟ୍ ମି.
1: ୟେସ୍, तो आपका इंटरेस्ट जो है, यू हैव इंटरेस्ट इन द कल्चर फील्ड, सो दैट्स व्हाई यू आर इन द कल्चरल सोसाइटी. सो प्लीज एक्सप्लेन अबाउट योर कल्चरल इवेंट्स एंड अदर थिंग्स व्हिच यू डू इन योर एग्जीबिशंस और इन योर परफॉर्मेंस एंड अदर एक्टिविटीज.
7: So I am basically part of the cultural committee. So the cultural committee comprises of currently 10 members, the juniors, and if you count the seniors, there are 7 members. So we are currently 17 members in the cultural committee. And in cultural committee, we cover almost all celebrations, like from small to large celebrations, and we make sure that each and every, you know, each and every aspect of each and every person or each and every religion or each and every individual feels included in our college. So we make sure to, you know, go ahead with the functions. It can start from Pongal, Onam to Ganesh Chaturthi, Navratri, yes, and all, yes, such kind of celebrations. And other than the cultural committee, we also have many other committees as well. They even have different sources of celebrations. If we talk about the club that we have, that is Magnum Opus, that is basically an arts club. And that club usually focuses on art performances. And they had an event known as Rose Gram, wherein our college people had the opportunity to, you know, give roses to people along with, okay, letters and sweet notes, you know, whomever you wish. Yes. So we could give it to our friends, to our well-wishers, anyone on the campus we like to. So that's about it. And we are soon going to have a Scribble Day. The Scribble Day is going to be organized by the PR and Media Committee. So in Scribble Day, it'll be a thing wherein we say, you know, bid farewell to our seniors, wherein we'll write scribble with the pens and markers on our shirts and on our hands and such things, so that, you know, it's like a fun thing and fun way to say goodbye to the seniors who are now going to leave the campus.
1: Okay, so hope your initiative will enrich our culture also.
7: Yeah, yeah.
1: So aap se baat karke bahut khushi hui. Thank you so much.
7: Thank you so much. Yeah. One.

0: ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର ବର୍ତ୍ତମାନ ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣନ୍ତୁ। ରିଲେ କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ।
1: ନମସ୍କାର, ଆକାଶବାଣୀ ସମାଚାର କେ ସାଥ ମୈଁ ଜୟା ଭାରତୀ। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉ जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
2: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
1: ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता तथा भारतीय समुदाय के कल्याण के साथ साथ ईंधन की कम कीमतें चाहता है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया। अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए चार दिन की भारत यात्रा पर हैं। यह बैठक 26 मई को आयोजित की जाएगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सी मोतेगी भी भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,000 से अधिक मतों से हराया। श्री कुर्मी को 40,600 से अधिक वोट मिले हैं। तीसरे स्थान पर कांग्रेस के अब्दुल रजाक और चौथे स्थान पर तृणमूल कांग्रेस के जहांगीर खान रहे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान फलता में मतदान में धांधली होने के बाद इस सीट पर पुनर्मतदान के आदेश दिए थे। यहां इस महीने की 21 तारीख को मतदान कराया गया था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। यह निर्णय CBSE के परीक्षा परिणाम सेवा पोर्टल के संबंध में विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की चार सदस्यों की मेडिकल टीम ने आज भोपाल में पूर्व मॉडल और अभिनेत्री त्विशा शर्मा का दूसरा पोस्टमार्टम किया। यह पोस्टमार्टम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगभग 3 घंटे तक चला। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया और भोपाल के भदभदा शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। 33 वर्षीय त्विशा की मृत्यु भोपाल में उनके ससुराल में हुई थी। त्विशा के परिवार ने ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म के साथ 16 कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इनका प्रसारण आज और कल आकाशवाणी गोल्ड के 100.1 चैनल पर किया जाएगा। इन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। श्रोताओं से अनुरोध है कि वे आज और कल आकाशवाणी से जुड़े। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू चलने की चेतावनी दी है। अगले 5 दिन तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कुछ इलाकों में भी लू की चेतावनी जारी की गई है। और खेलों में मुंबई में IPL क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 206 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक मुंबई ने तीसरे ओवर में 2 विकेट पर 18 रन बना लिए हैं। वहीं कोलकाता में आज शाम 7:30 बजे से दिल्ली कैपिटल्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: आकाशवाणी संबलपुर सुनंतु संबलपुरी मुख्य संवाद।
3: आकाशवाणी संबलपुर मुख्य खबर संगे मुई भारत गौरव दास। राइजे जबर खरा आ गुळगुळी के नेकरे लुक्कु सतर्क रहबारके परामर्श दे राजस्व आ विपर्य परिचालना मंत्री सुरेश पुजारी। पुरी श्रीमंदिर रत्नभंडार गंतीमती काम आईष्ठान स्थगित। भितर काटपाशु महापुरमानंकु दर्शन करुछन श्रद्धालु। ओडिशार पूर्वतन मुख्यमंत्री नीलमणि राउतरायंकर जन्मवार्षिकी श्रद्धाजलि जनाले राज्यवासी। ଶ୍ରୀ ରାଉତରାୟ 1977 ମସିହା ଥି ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାର ପହିଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ନେଇଥିଲେ ଦାୟିତ୍ୱ। ବିଏଡ୍ ବିଏଚ୍ଏଡ୍ ହିନ୍ଦୀ ଆଉ ଏମ୍ଏଡ୍ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଲାଗି ବାହାରିଲା କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ। ଆଇବା 31 ତାରିଖ ବିଏଡ୍ ଆଉ ଜୁନ୍ 3 ତାରିଖ ଦିନ ବିଏଚ୍ଏଡ୍ ଆଉ ଏମ୍ଏଡ୍ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଲାଗି ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ହେବା ବୋଲି ରାଜ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ଚୟନ ପ୍ରବରଣ ଆୟୋଗ ତରଫରୁ ସୂଚନା। ଇବୋଲା ସଂକ୍ରମଣକେ ନଜରଥି ରଖିକରି କଙ୍ଗୋ ଉଗାଣ୍ଡା ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ସୁଡ଼ାନ ଗସ୍ତକେ ନେଇକରି ସତର୍କ ରହିବାରକେ ସରକାରଙ୍କର ପରାମର୍ଶ। ଦେଶେ ଇବୋଲା ସଂକ୍ରମଣର କେନ୍ସି ମାମଲା ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଉ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ତରଫରୁ ସୂଚନା। ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ଲାଗି 3 ରଥର 21ଟା ଅଖ ତିଆରି କାମ ହେଲା ଶେଷ। ମାନସିକ ରୋଗୀମାନଙ୍କର ଲାଗି ସାମାଜିକ ସ୍ନେହ ଆଉ କରୁଣା ଜାଗୃତ କରିବାର ସହିତ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଜି ପାଳନ କରାଯାଉଛି ବିଶ୍ୱ ସିଜୋଫ୍ରେନିଆ ସଚେତନତା ଦିବସ। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରଭାବ ଲାଗି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗହିରମଥା ଅଞ୍ଚଳନ ଚଳିତ ବଛର ଅଣ୍ଡା ନାଇଁ ଦେଇକରି ସମୁଦ୍ରକେ ଫେରିଗଲେ ଅଲିଭ୍ ରିଡ୍ଲେ। ରାଜ୍ୟର 14 ଜଣ ଆଇପିଏସ୍ ଆଉ 4 ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ଓପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ବଦଳି ନେଇକରି ଗୃହ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ବାହାରିଲା ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ଖାତା ସ୍କେନ୍ କପି ପାଇବାର ଲାଗି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆଉ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଲାଗି ସିବିଏସ୍ଇ ତରଫରୁ ଦିଆଗଲା ସ୍ୱଷ୍ଟୀକରଣ। ଆଇପିଏଲ୍ T20 କ୍ରିକେଟ୍ର ଆଜିର ପହିଲା ମ୍ୟାଚ୍ ଥି ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସର 205 ରନ୍ ଜବାବ ଥି ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ କରିଛେ 2.3 ଓଭର ଥି 2 ୱିକେଟ୍ ହରିକରି 18 ରନ୍। ଆଉ ରାଇଜେ ଜବରତାତି ଆଉ ଗୁଳୁଗୁଳି ନେଇକରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି। ଝାରସୁଡ଼ା ସମ୍ବଲପୁର ବୌଦ୍ଧ ଆଉ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାକେ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି। ଏଛିନ୍ ମୁଖ୍ୟ ଖବର ନେ ଶେଷ ହେଲା। ଇତାର ଉତ୍ତରର ମୁଖ୍ୟ ଖବର ଶୁଣିପାରିବେ ରାତି 8 ବଜେ।
0: ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରସାରିତ ହେବାକୁ ଥିବା କେତେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 6:10 ଶୁଣିବେ ଅହମିଆ ଭାଷାର ଗୋଷ୍ଠୀ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ରାତି 7:25 ଜିଲ୍ଲା ହାଲଚାଲ ରିଲେ କରି ଶୁଣିବୁ ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ରାତି 7:30 କୃଷି ସଂସାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଏଥିରେ ଶୁଣିବେ ସଙ୍ଗୀତ ରୂପକ ପେତେନ, ରଚନା ଶିରିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପୂଜାରୀ, ପ୍ରଯୋଜନା ବଦ୍ରିନାରାୟଣ ମିଶ୍ର, ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରଭୁଦତ୍ତ ପ୍ରଧାନ। ରାତି 8:02 ସୁଗମ ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିବେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଅମିତ କୁମାର ଦାସ ଏବଂ ଅମୃତା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ସାହୁ। ରାତି 8:15 ସମବେତ କଣ୍ଠରେ ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ ଗୀତ ଶୁଣିବେ। ରାତି 9:30 ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ପତ୍ରିକା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରେଡିଓ ସ୍କୋପ ରିଲେ କରି ଶୁଣିବୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ସେହିପରି ରାତି 10:00 ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ରିଲେ କରି ଶୁଣାଇବୁ ରବିଭାଷରୀୟ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏହି ଥିଲା ଆଜି ପ୍ରସାରିତ ହେବାକୁ ଥିବା କେତେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା। ଏଥର ଆଗାମୀକାଲି ପ୍ରସାରିତ ହେବାକୁ ଥିବା କେତେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଗାମୀକାଲି 6:30 ଶୁଣିବେ ଆଜିର ଭାବନା, ଉପସ୍ଥାପନା ମନୋଜ କୁମାର ପୂଜାରୀ। 6:35 ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ। 7:10 ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୂଚନା, ଏଥିରେ କାନ୍ଧ ବ୍ୟଥାର କାରଣ ଓ ପ୍ରତିକାର, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବେ ଡାକ୍ତର ସ୍ମୃତି ରେଖା ହୋତା। ପରିବେଶ ସୂଚନା ଶୁଣିବେ 7:30, ଏଥିରେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ପକ୍ଷୀକୂଳ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବେ ଡକ୍ଟର ସମାପିକା ଦାସ। ସୁଗମ ସଙ୍ଗୀତର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସୁରଞ୍ଜନୀ ପ୍ରଚାର କରିବୁ 7:35 କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାଉତ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତା ମାସି, ଗୀତ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ନିର୍ମଳ ନାୟକ, ସଙ୍ଗୀତ ବିଜୟ କୁମାର ବେହେରା। 7:50 ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତ ଶୁଣିବେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ପଦ୍ମଲୋଚନ ଦାସ ଏବଂ ସୌଭାଗିନୀ ପୁରୋହିତ, ବିପିନ ବିହାରୀ ପଟେଲ ଏବଂ ଗଗନ ବାଗ ଗାଇଥିବା ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତ ଶୁଣିବେ 8:30। 8:45 ସୁଗମ ସଙ୍ଗୀତ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ସଂଯୁକ୍ତ ଶତପଥୀ ଏବଂ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ପଣ୍ଡା। ଦିନ 11:05 ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ମକରଧ୍ୱଜ ଧରୁଆ, ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦ ଭୋଇ, ଯୋଗେଶ୍ୱର ପଣ୍ଡା, କ୍ରିଷ୍ଣା ପଟେଲ ଏବଂ ମୋହନ ସେଠ, ହିନ୍ଦୀ କଥାଚିତ୍ର ଗୀତର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଖୋଲା ଝରକା ପ୍ରଚାର କରିବୁ ଦିନ 11:30 ରେ ଦିନ 12:00ରେ ବାତାୟନ।

0: ଏନ୍ସିଆର୍ଟି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣିବେ ଦିନ 12:30। ଦିନ ଗୋଟାଏ 5 ମିନିଟ୍ରେ ସୁଗମ ସଙ୍ଗୀତ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ମୀରା ମିଶ୍ର ଏବଂ ଲୀନାନାଥ ଶର୍ମା। ଏହି ଥିଲା ଆଗାମୀକାଲି ପ୍ରସାରିତ ହେବାକୁ ଥିବା କେତେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା। ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣନ୍ତୁ ଅହମିଆ ଭାଷାରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା।
1: अच्छा बच्चों, आज हम तुम्हें असमिया भाषा का एक गीत सिखाएंगे। सीखना चाहते हो ना असमिया भाषा गीत?
2: जी हाँ।
1: अच्छा, ये जो गीत है इसमें अपने देश की मिट्टी के प्रति देशवासियों के प्रेम का प्यार का वर्णन है। तो मैं सिखाऊंगा ये गाना और मेरी मदद करेंगी नलिनी जी साथ। सबसे पहले तुम गीत के बोल लिख लो। ए माती रे,
2: माती रे,
1: एई माती रे, मोरो मोते,
2: मोरो मोते,
1: माती के,
2: माती के,
1: सुमीलो,
2: सुमीलो,
1: माती के सुमीलो, माती के सुमिलो। हो गया ना यहाँ तक? आगे लिखो। एई माती ते, एई माती ते, जीवन, एई माती ते, ज नहीं बोलना इसको, ज बोलना। ये एई माती ते जीवन सोबी, जीवन
2: सोबी,
1: जी कैसे ज के नीचे बिंदी लगा लेना है ना, तो जीवन सोबी आकी आकी, दोबारा आकी आकी आकी, मोसीलो। अब पहला अंतर आएगा इसके बाद। दूर आकाहार, ये जो ना आका आकाश श को बोलते हैं वहां ख की तरह से, तो आकाश ये ख और ह के बीच में आका खार भी नहीं, आका हार भी नहीं, आका हार, आका हार लिखो। दूर आका हार, रोहन कियोनु, लागे लागे, खागोर टोलीर, खागोर खागोर, ख नहीं बोलना, ख, खागोर टोलीर, खागोर मतलब समुद्र के तल में, तो खागोर टोलीर, मानिक कियो, मानिक कियो नू, मानिक कियो नू, लागे लागे,
2: लागे लागे।
1: इसके आगे है आहा आहा, फिर मातिर बुकुत,
2: मातिर बुकुत,
1: हाँ मातिर बुकुत, मोनोर मालोती,
2: मालोती,
1: बूटोलो,
2: बूटोलो,
1: मोनोर मालोती बूटोलो। इसके बाद फिर वही आ जाएगा, एई माती रे मोरो मोते। फिर दूसरा अंतर है मोनोर कोरोनी रे,
2: कोरोनी रे,
1: हुरोर हुरोर पापोरी रे,
2: पापोरी रे,
1: पापोरी रे आजी,
2: आजी,
1: इतना हो गया ना।
2: जी हाँ।
1: आगे हुकुमार,
2: हुकुमार
1: थापो नाहुजुवा, हुकुमार थापो नाहुजुवा। आगे लिखा है ना।
2: जी हाँ।
1: हुंदौर खुदीनौर, खुदीनौर नहीं खनी ख, खुदीनौर नौतून दृष्टि, ये ट को जरा त जैसा बोलना सॉफ्ट करके, दृष्टि दृष्टि शनि सही बोलना, दृष्टि दृष्टि कौनो ना हुआ, आगे ना। अच्छा ठीक है, अब गाना सिखाना शुरू करते हैं। स्वर दीजिए जरा।

0: अपा
1: हाँ?
0: देखो
2: हैप्पी बर्थडे भाई
0: देखा वाह मोर फेवरेट कलर
3: सबु बेले शॉपिंग
0: आई नो मा खर्च करिबारो बयस एटा राइट
4: सेविंग करिबारो भी बयस एटा
5: आई नो बापा सेव कर उचित जगह रे निवेश कर मूलधन ऊपर सुध मिलिब जहा को पूणी थरे विनियोग करले सुध मिली चालीथिब आई नो ना आरबीआई कहे
6: कर सटीक आरंभ हुआ फाइनेंशियली स्मार्ट
7: ये हेउची मो सानो भाई बहुत दुष्ट कॉलेज रे मार्कशीट फोटोशॉप करके बापा को देखाउथिला काली मु लाइट बिल रे जीरो अमाउंट देखिली तापरे भाबिली कि निहाती एटा फोटोशॉप कराही छी नहले जीरो बिजुली बिल पॉसिबल केमिति पचारिली तो कहला
8: भाई सबु सही ऊपर वाला रा दया सोलर पैनल अछि ना
7: मु कहली ओ सेईटा सत कथा भाई पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजुली योजना जोडी हेबा पई विजिट करंतु pmsuryaghar.gov.in

0: हाय गो सुनो छके दुकान गोट टिके आनला भाय ई बरा ढीचा ता बनामी बोलु थिली हग सुनो छकी नहीं
1: इवा काणा करु छन का सुन बार नहीं जे टैक्सी तो हां हेत के डाकू छे जे सुन तो नहीं थे
2: सुनु छे काम बोलु छु
1: गोट टिके आनलो की नहीं
2: नहीं आनी नो
1: हां ता तो केंता पासरी देसो जे केंदा करमी यहां दे में कहो तो
2: ओहो ते काणा कोचर कोचर होतु सुरे
1: काणा कोचर कोचर हैली आला बेले गुटी के आदमी बलो और पासरी देलो यहां दे बरा दुरा को केंथे बनामी कहो तो
2: ओह बरा बनौ छे छाड़ है बरा बुरी मोते भल नहीं लगबार
1: भल नहीं लगबार जे गुटी के आनी नहीं पालो बाप रे
2: ओहो फेर कोचर कोचर कोहली पोरे लो मोते भल नहीं लगबार
1: भल नहीं लगबार का बोल सगो
2: ओहो कोहली परे मते भोन नै लागबा लो आइला बले देहटा कोस कोसाला बाकी लागला लो अरे दुकान आ जाय जो नै पाल्ली नो
1: देह कोस कोसाला बाकी लागु छे
2: हां
1: इबा का हला जे
2: आगो मते जोर धयला नो बाकी लागु छे नो
1: जोर धयला नो देह तो पुछे भाई इबा केनता लागु छे जोर हलानो केंता बोलसो
3: सुनो

0: कदवाली अरे कुटा रंग पेतेन मोते आए दे बागिली
1: का बोलो केन पेतेन तुमको गिलबा जे आसू तो गुनिया बाबा के डाकी आनमी जे ताके एखै घर के बांधी नबा
2: गुनिया पर मोते बांधबा केहनी गुनिया मोते केभे बांधी नहीं पारे जाके पारी ताके मुई पोकेई देसी जोरे प्लाज्मोडियम फाल्सी पेरम बोड़े खतरना डुके देमी जहार दिए एक ही घर के छाट अरे नो निर्मा तुई मोते नहीं जानी मुई एनोफिलिस पेतेन तोते भकी देमी
3: फगनु दादा ए फगनु दादा का करूछु
4: जुहार जुहार डॉक्टर बाबू हसो हसो भीतर के आसो देखो तो तुमर दादा खोटो उठि नाइ पारबार के
3: किवा का हला जी
4: जोर आनुचे छाल दे करे जोटा उतरी जाउचे फिर जोर आनुचे काए जोर इटे जे घाटी देला नो डॉक्टर बाबू
5: डॉक्टर बाबू मुई यार नहीं होए नो मोते गुड़िया पेते नजर पके दे चन हो।

0: करना पड़ेगा। ये फर्टिलाइजर का उपयोग खेती के अलावा, सब्सिडी वाले फर्टिलाइजर का उपयोग और कहीं नहीं हो, ये डाइवर्जन हो जाता है, डाइवर्ट नहीं होने देंगे इसे, और ऐसा हो तो कड़ी कार्रवाई है। क्योंकि किसान के लिए है सस्ता खाद, 266 की यूरिया की बोरी, 1350 की डीएपी की बोरी। अब आपको पता, अभी अभी 41,000 करोड़ रुपए की कैबिनेट ने खाद की बढ़ती कीमत किसानों पर उसका बोझ ना, इसलिए अभी अभी 41,000 करोड़ रुपया स्वीकृत किए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय से महंगा हो रहा है, खाद मिलने में कठिनाई जा रही। मुझे बताते हुए कोई संकोच नहीं है, भारत सरकार पूरे प्रयत्न कर रही है कि कहीं से जहां मिले वहां से लाएंगे, किसान को कमी नहीं आने देंगे, लगे हम लोग। लेकिन दिक्कत तो है अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण, तो उस दिक्कत में हम कम से कम खाद फालतू तो नहीं जाने दें, अनावश्यक तो ना डाले, ये हम सबको करना पड़ेगा। एक चीज और जो बड़ी आती है, मैं सब अधिकारी मित्रों से भी कहना चाहता हूँ, वो है घटिया खाद, नकली पेस्टिसाइड। नकली भी मैं कह रहा हूँ, कई जगह उसमें पर्याप्त तत्व होते ही नहीं है, और भरी बोरियों में दे दिया किसानों को, किसान डाल रहा है, फायदा ही नहीं हो रहा, पैसा ज्यादा लग रहा है, लागत बढ़ रही है, और पता चला कि जो वायरस है, बैक्टीरिया है, इल्ली है, बाकी मर ही नहीं रहे उसमें। ये नकली के खिलाफ अभियान है, व्यापक पैमाने पर अभियान, नकली करने का कारोबार करने वालों को किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे, उससे बड़ा अपराध कोई दूसरा नहीं हो सकता। अभी हम संसद के अगले सत्र में पूरी कोशिश कर रहे हैं पेस्टिसाइड एक्ट और सीड एक्ट नया लाने की, जनता की राय हमने ले ली है, क्योंकि अभी तो 1968 का कानून लागू है जिसमें 1,500 रुपये जुर्माना होता है, तो नकली करने वाले को बेचने वाले को क्या फर्क पड़ता है, दो 1,000 रुपये और फिर नकली बेचो। कड़ा कानून भी बनेगा लेकिन कार्रवाई भी कड़ी होनी चाहिए, और वो राज्यों को करनी पड़ेगी, हमें केंद्र के पास सीमित अमला है तो वो काम हमको करना पड़ेगा। तिलहन मिशन की बात अभी अतीश कह रहे थे, तिलहन मिशन की बात, अब ये पूर्वी क्षेत्र है जो हमारे देश का, ये दलहन के लिए आदर्श है, और इसलिए दलहन मिशन को हम कैसे कामयाब बनाए, और दलहन मिशन कामयाब तब बनेगा जब किसान जो दाल पैदा करता है उसको भी हम खरीदने का काम करेंगे, तो खरीद के सिस्टम को और बेहतर, दलहन तिलहन के पीएम आशा के अंतर्गत उसको और बेहतर बनाना पड़ेगा। अभी उड़ीसा ने भी खरीद शुरू की है, छत्तीसगढ़ ने भी शुरू की है, बिहार ने भी इस बार शुरू की है खरीद, लेकिन कई बार लगता है कि धान की खरीदी तो सुनिश्चित है, अब हम अरहर पैदा करें, तुअर पैदा करें, या मसूर पैदा करें, या उड़द पैदा करें, तो बिकेगी कि नहीं बिकेगी पूरी, तो हमको पीएम आशा के अंतर्गत खरीद सुनिश्चित करनी पड़ेगी, या नेफेड के एनसीसीएफ के मित्र भी बैठे, भारत सरकार की एजेंसी भी करें और हम भी करें, क्योंकि कई बार उसको डर रहता है कि ये पैदा किया तो बिकेगा नहीं मेरा ढंग से, तो हमको दलहन मिशन को, तिलहन मिशन को, इसको भी कामयाब बनाने पर पूरी ताकत के साथ काम करना है। और मुझे लगता है नए प्रयोग जितने, रिसर्च, अनुसंधान, शोध, मैं पांचों राज्यों से कहता हूं, आग्रह करता हूं कि आपके यहां जो समय उपयुक्त समझे आप विकसित कृषि संकल्प अभियान बनाइए, क्योंकि पिछली बार हमने एक बनाया था तो अलग अलग मौसम और परिस्थितियों के हिसाब से वो एक समय ठीक नहीं होता पूरे देश में, इसलिए आप पर छोड़ा है। भारत सरकार के पास, आईसीआर के पास, हमारे केबीके के मिला के 16,000 वैज्ञानिक है, हम इनको खेतों में भेजना चाहते हैं। आप जो 15 दिन तय कर लें, 20 दिन तय कर लें, उस समय हमारे वैज्ञानिकों की टीम आपके राज्य में आएगी और आप जो कार्यक्रम बनाओगे किसानों को समझाने का काम। रिसर्च और अनुसंधान सीधे किसान के पास पहुंचना चाहिए, तो उसमें भारत सरकार आपके साथ कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगी। अब ही आप तय करें, उसमें थोड़ा समय मुख्यमंत्री जी भी देंगे, थोड़ा कृषि मंत्री देंगे, बाकी लोगों को लगाएंगे तो ज्यादा प्रभावी बन जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं हमारा रिसर्च, शोध और अनुसंधान नीचे किसान के पास तक पहुंचे, तत्काल उसको लाभ मिले, और इसलिए कुछ राज्यों ने अभी पहल की, गुजरात ने बनाया, यूपी ने बनाया, हमारे वैज्ञानिक वहां जा रहे हैं। वैसे ही 1 जून से जो हम तय कर रहे हैं खेत बचाओ अभियान, उसमें हम ये सब चीजें कर सकते हैं। हम आधुनिक टेक्नोलॉजी की जानकारी भी दे सकते हैं, हम योजनाओं की ढंग से जानकारी दे सकते हैं, 1 जून से 15 जून तक सोचा हुआ है, हम दलहन तिलहन मिशन के बारे में भी बता सकते हैं, तो किसान को जागरूक करने का काम उसमें हो सकता है। तो इन सब विषयों पे जैसा मैंने कहा कि हम चर्चा करके फैसला करें।
1: कार्यक्रम रे जोग दे कृषि क्षेत्र रो सामग्रिक विकास ओ कृषकों का आर्थिक सशक्तिकरण उपरे उभय केंद्र और राज्य सरकार गुरुत्व देउछंती बोली मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहिछंती। से कहिछंती कृषि ओ कृषक कल्याण राज्य सरकार को सर्वोच्च प्राथमिकता, आधुनिक कृषि प्रजुक्ति, जल संरक्षण, फसल विविधीकरण और प्राकृतिक चाष को प्रोत्साहन माध्यम कृषकों आय वृद्धि पर सरकार कार्य करुछंती।
2: आप सभी को मालूम है पिछले 2.5 महीने से भी ऊपर मध्य प्राच्य में युद्ध की परिस्थिति बनी हुई है, पेट्रोल डीजल की संकट के साथ ये कृषि क्षेत्र को भी प्रभावित कर रहा है, क्योंकि युद्ध की वजह से खाद उत्पादन के लिए जरूरी कच्चा माल उत्पादन में भी परेशानी आज हम हो रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हम सबको इसी विषय पर सतर्क किए हैं और हमारे किसान समाज को खाद का इस्तेमाल कम करने के लिए आह्वान दिए हैं। जितना जरूरी है इतना ही खाद व्यवहार करना चाहिए। हमारा किसान भाई और बहनों को भी प्रधानमंत्री जी के आह्वान को

0: गंभीरता के साथ विचार करना आज का दिन में जरूरी है। हमें प्राकृतिक कृषि को अपनाना होगा क्योंकि ज्यादा से ज्यादा रासायनिक खाद और कीटनाशक के उपयोग से मिट्टी धीरे धीरे प्रदूषित होने जा रहा है। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, रासायनिक खाद के उपयोग से धरती माता को बहुत पीड़ा होती है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में कृषि क्षेत्र में निरंतर विकास हो रहा है। आज भारत लगभग सभी प्रकार कृषि उपज में आत्मनिर्भर है। आज हमारा देश सिर्फ कंजप्शन करने की अर्थनीति नहीं है, आज भारत रिकॉर्ड एक्सपोर्ट भी करता है। ये संभव हुआ माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी विजन और इस विजन को सार्थक करने के लिए विभिन्न योजनाओं की क्रियान्वयन से। माननीय शिवराज जी खुद एक किसान है, इसलिए हम सब लोग आज बहुत गर्व की बात करते भी है। इसलिए किसानों की भी बहुत जरूरत है, वो भी बखूदी जानते हैं। पिछले 2 साल से कृषि मंत्री के रूप में वो कृषि क्षेत्र में अभूतपूर्व अवदान आज सारा देश को दे रहे हैं। ओडिशा मूल रूप से एक कृषि प्रधान राज्य है। कृषि यहाँ के लोगों की जीविका और सुरक्षा के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारे सामाजिक और आर्थिक विकास का एक मुख्य स्तंभ है कृषि। जैसा श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री चौहान जी के कुशल नेतृत्व में राज्य के कृषि विकास के लिए हम पूरी तरह आज प्रतिबद्ध हैं। पूरे समाज तथा सरकार के सम्मिलित दृष्टिकोण के साथ राज्य के कृषि क्षेत्र को अधिक समावेशी और जलवायु अनुकूल क्लाइमेट रेजिलिएंट बनाने के लिए नए और प्रमुख फ्लैगशिप कार्यक्रम भी हमने भी हमारे राज्य तरफ से हमने भी शुरू किए हैं। हमारा सरकार के कुछ प्रमुख और क्रांतिकारी पदक्षेप बारे में निश्चित रूप से हम दिस शब्द कहना चाहूंगा। भारत सरकार की दाल या पल्सेस उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए एक केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में मिशन फॉर आत्मनिर्भरता ऑन पल्सेस की शुरुआत की है। अरहर उड़द और मसूर दाल का उत्पादन बढ़ाना, खेती का विस्तार करना, कटाई के बाद के स्टोरेज और मार्केटिंग लिंकेज को मजबूत करना इसका पूरा लक्ष्य है। ओडिशा में वर्तमान 21 लाख हेक्टेयर से अधिक जमीन पर दाल की खेती की जा रही है और इस प्रकार भारत सरकार ने खाने के तेल के उत्पादन बढ़ाने के लिए साल 2024-25 से 2030-31 की अवधि के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन की शुरुआत की है। खाने के तेल में आत्मनिर्भर होने के लिए ये बहुत हमारे लिए और आज का दिन में जरूरी है।
1: अशह तातीय गुड़गुड़ी नहीं जनसाधारण को सतर्क रही लगे राजस्व और विपर्य परिचालन मंत्री सुरेश पुजारी कहते विशेष भाव पूर्वाह्न 11:00 अपराह्न 3:00 मध्य घरे रही लगे श्री पुजारी परामर्श दे।
2: अति जरूरी काम न पड़े घर बाहर नहीं जो माने श्रमिक मैंने परामर्श दिखाई मालिक मान निर्देश दिखाई 11:00-3:00 पर्यत कर्म क्षेत्र श्रमिक मान कर्म बंद रही 3:00 पर आरंभ हो पारे। अति आवश्यक पड़े घर बाहर स्वच्छ पीवा पानी नहीं बाहर मुंडे उदा गामुछा नहीं बाहर कला चषमा व्यवहार करने चेष्टा कर पाट जाकर पीवा पानी व्यवस्था पीआर डिपार्टमेंट म्युनिसिपालिटी अर्बन डिपार्टमेंट से कर जो माल परिवहन गाड़ी मान को निर्देश दिखाई 11:00-3:00 भितर रास्ता रे माल परिवहन गाड़ी रही ना जो बस यात्री परिवहन करुच्ची समस्त सुविधा सहित पैसेंजर मान को पानी पीएबा ओआरएस पैकेट देवा ठार आरंभ कर आनुषांगिक पदक्षेप नहीं कर गाड़ी चलई पार तेणु मोटामोटी परिस्थिति नियंत्रणाधीन अच्छे 2 तारीख पर्यंत यह अवस्था ओडिशार विभिन्न जगार हे तेणु 2 तारीख पर्यंत सतर्क सूचना सारा राज्यवासी को दिया है।
1: उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद परिचालित युक्त 2 विज्ञान कला वाणिज्य और धंदामूलक शिक्षार परीक्षा फल प्रकाश पाई। विज्ञान में पास हार 88.82% होता बेले कलार 84.50 वाणिज्यर 88.7 और धंदामूलक शिक्षार परीक्षा फल 77.62% होई। मोट 398,090 जन छात्र छात्रों मध्य 341,781 जन उत्तीर्ण होती। कलार संबलपुर विज्ञान में बालेश्वर वाणिज्य में बौद्ध और धंदामूलक शिक्षार नवरंगपुर सर्वाधिक पास हार हासिल कर। पुरी श्रीविहार स्थित श्रीजगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा परिचालित 2026 मसीहार युक्त 2 उपशास्त्री नियमित और पूर्व नियमित परीक्षा फल प्रकाशित होई। मोट 8,442 जन परीक्षार्थी 7,526 जन कृतकार्य होती। मोट उत्तीर्ण हार 99.16% रही। आसंता मे 31 तारीख में 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम और जून 3 तारीख में बीएचएड हिंदी और एमएड पाठ्यक्रम प्रवेशिका परीक्षा अनुष्ठित होगा। ମେ 31 ତାରିଖରେ ସକାଳ 10ରୁ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଏଡ୍ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଓ ଜୁନ୍ 3 ତାରିଖରେ ସକାଳ 10ରୁ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଏଚ୍ଏଡ୍ ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ଅପରାହ୍ନ 3ଟାରୁ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମ୍ଏଡ୍ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ମେ 27 ତାରିଖ ଦିନ 11ଟାଠାରୁ ବିଏଡ୍, ବିଏଚ୍ଏଡ୍ ଓ ଏମ୍ଏଡ୍ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଡ୍ମିଟ୍ କାର୍ଡ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଷ୍ଟେଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ବୋର୍ଡର ୱେବ୍ସାଇଟ୍କୁ ଯାଇ ଆଡ୍ମିଟ୍ କାର୍ଡ ଡାଉନ୍ଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। ଜୁନ୍ 4 ତାରିଖରେ ଏସ୍ଏସ୍ବି ୱେବ୍ସାଇଟ୍ରେ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷାର ଉତ୍ତର ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ସମ୍ପ୍ରତି ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଦେଶରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଖର୍ଚ୍ଚ କାଟ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝି 8 ସୂତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ସରକାରୀ ସ୍ତରର ବିଭିନ୍ନ ବୈଠକ, ସମୀକ୍ଷା, ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ, କର୍ମଶାଳା ଆଦି ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ନ ହେଲେ ଆଭାସୀ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯିବ। ଜୁନ୍ ମାସ 1 ତାରିଖଠାରୁ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ଯେତେ ନୂଆ ଦୁଇଚକିଆ ଓ ଚାରିଚକିଆ ଯାନ କିଣାଯିବ ସେଗୁଡ଼ିକ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ ହୋଇଥିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷ ଆବଶ୍ୟକତା ଭିତ୍ତିରେ ପେଟ୍ରୋଲ କିମ୍ବା ଡିଜେଲ ଯାନ କିଣିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ। ସେହିଭଳି ଜୁନ୍ 1ରୁ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଭଡ଼ା ସୂତ୍ରରେ ନିଆଯାଉଥିବା ସରକାରୀ ଚାରିଚକିଆ ଯାନ ଇଭି ହେବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ସରକାରୀ ଯାନ ପାଇଥିବା ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ସରକାରୀ ଯାନ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବା ଅର୍ଥର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ 50% ହ୍ରାସ କରାଯିବ। କେଉଁ ପାହ୍ୟାର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ସରକାରୀ ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ସେଥିନେଇ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି କରିବେ। ଦୂରସ୍ଥାନକୁ ପରିଦର୍ଶନରେ ଗଲାବେଳେ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବସ୍ କିମ୍ବା ରେଳଯାତ୍ରା କରିବେ। ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଗାଡ଼ି ରହିଛି ସେମାନେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଭଳି ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ରହୁଥିବା ସ୍ଥାନରୁ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବସ୍ କିମ୍ବା ମିନି ବସ୍ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ସରକାରୀ ଯାନର ଚଳପ୍ରଚଳ ବାବଦକୁ ମାସିକ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ବ୍ୟବହାର ପରିମାଣ ଯେପରି ଅତିକମ୍ରେ 10% କମିବ ସେ ଦିଗରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସୁଚିନ୍ତିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲି ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀରେ କୁହାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସଚିବାଳୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ବିଭାଗର ଉପଖଣ୍ଡ, ତହସିଲ, ବ୍ଲକ ସ୍ତର ସହିତ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଓ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ, ସଂସ୍ଥା, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ସମିତିମାନଙ୍କରେ ଏହାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ କୀର୍ତ୍ତିରାଜିର ସୁରକ୍ଷା, ତ୍ୱରିତ ନ୍ୟାୟିକ ସେବା ଏବଂ ତାପ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ଭଳି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ନୀଳ ଅର୍ଥନୀତିର ବିକାଶ ପାଇଁ ସାମୁଦ୍ରିକ ସମ୍ପଦର ସୁରକ୍ଷା ଓ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସାମୁଦ୍ରିକ ମତ୍ସ୍ୟଧରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅଧିନିୟମ 2026କୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପାରାଦୀପ ଗ୍ରିଡ୍ ସବ୍ଷ୍ଟେସନ୍ ପାଇଁ 854,24,00,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ଡିଜେଲ ବିକ୍ରୟ ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସହଜ କରିବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ହାଇସ୍ପିଡ୍ ଡିଜେଲ ଡିଲର୍ସ ଲାଇସେନ୍ସ ରିପିଲ୍ 2026କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ସମାଚାର ଦର୍ପଣ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ବିଭାଗ ଓ ଉପସ୍ଥାପନାରେ ମୁଁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ବେହୁରା।

0: ଆପଣମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରିଲେ କରିବେ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। भारत और अमेरिका ने नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय वार्ता में व्यापार समझौते, ऊर्जा सुरक्षा और गतिशीलता को सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में महत्वपूर्ण बताया। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देवांशु पांडा ने 1,00,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल की। तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को संदिग्ध अवैध प्रवासियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया। सरकार ने सीबीएसई पुनर्मूल्यांकन पोर्टल की खामियों को दूर करने के लिए आईआईटी मद्रास और कानपुर के विशेषज्ञों को शामिल किया। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के थट्टे हक्कालू नदी में तेज बहाव के कारण 8 लोग डूबे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने हादसे पर गहरी संवेदना व्यक्त की। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम भागों में भीषण लू के कारण जनजीवन प्रभावित। अगले 7 दिनों तक यह स्थिति बनी रहेगी। और वियतनाम में एशियाई अंडर-23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली

0: दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, गतिशीलता तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉ. जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: ईरान संघर्ष पर डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि भारत के सामने मुख्य चुनौती अपने राष्ट्रहित और इन देशों के साथ संबंधों का संतुलन बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता तथा भारतीय समुदाय के कल्याण के साथ साथ ईंधन की कम कीमतें चाहता है।
2: We want peace and stability.
1: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं। दूसरा, हमारे लिए प्रवासी समुदाय का कल्याण और भलाई बहुत आवश्यक है। तीसरा, हम चाहते हैं कि ईंधन की कीमतें कम हों क्योंकि हम इसके बहुत बड़े आयातक हैं और इसका अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है।
2: Importer of energy and much of it comes from that region.
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
3: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: बाद में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच मुख्य रूप से रक्षा, सुरक्षा और रणनीतिक प्रौद्योगिकी सहयोग पर चर्चा हुई। अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए चार दिन की भारत यात्रा पर हैं। बैठक 26 मई को होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी भी भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देबांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार शंभुनाथ कुर्मी को बड़े अंतर से हराया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: तृणमूल कांग्रेस के तथाकथित डायमंड हार्बर मॉडल को तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी ने फलता विधानसभा सीट पर रिकॉर्ड जीत दर्ज की। पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंदर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। देवांशु पांडा को 1,49,666 वोट मिले। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान केवल 7,783 वोट के साथ चौथे स्थान पर रहे। कांग्रेस तीसरे स्थान पर है। इस चुनाव में तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई है। इस जीत के साथ विधानसभा की 294 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या बढ़कर 208 हो गई है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
5: सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देश में अधिकारियों को भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों और रोहिंग्याओं के निर्वासन तथा स्वदेश वापसी प्रक्रियाओं के संबंध में गृह मंत्रालय के निर्देशों का पालन करने को कहा गया है। इससे पहले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य पुलिस अधिकारियों को अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को अदालत में पेश करने के बजाय सीधे सीमा सुरक्षा बल को सौंपने का निर्देश दिया था। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सीमा सुरक्षा बल को 27 किलोमीटर भूमि सौंपने के बाद सिलीगुड़ी उपमंडल के फांसी देवा क्षेत्र में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाढ़ का काम भी शुरू हो गया है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। यह निर्णय CBSE के परीक्षा परिणाम सेवा पोर्टल के संबंध में विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों IIT के विशेषज्ञ दल प्रणाली में तकनीकी सुधार लागू करेंगे और विशेष रूप से पोर्टल की स्थिरता तथा सर्वर के सुचारू संचालन की जांच करेंगे। इस बीच शिक्षा मंत्री ने आज वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन से मुलाकात की और CBSE परिणाम और पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान तकनीकी और भुगतान से संबंधित चुनौतियों के बारे में बातचीत की। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि विचार विमर्श के दौरान यह तय किया गया कि भारतीय स्टेट बैंक, बड़ौदा बैंक, कैनरा बैंक और इंडियन बैंक CBSE की भुगतान प्रणाली को सुदृढ़ करने में मदद करेंगे। श्री प्रधान ने CBSE को अपनी भुगतान प्रणाली में पूरी तरह बदलाव करने के निर्देश दिए हैं। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने आज सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा और भारतीय वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। UPSC ने बताया है कि ये परीक्षाएं देश के 83 शहरों में 2000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। अंतिम आंकड़ों के अनुसार 8 लाख से अधिक आवेदकों में से लगभग 5,49,000 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। UPSC के अध्यक्ष डॉ अजय कुमार ने परीक्षा में के सफल आयोजन के लिए UPSC टीम के साथ साथ राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के प्रयासों की सराहना की है। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की 4 सदस्यों की मेडिकल टीम ने आज भोपाल में पूर्व मॉडल और अभिनेत्री ट्विशा शर्मा के कथित दहेज हत्या मामले में दूसरा पोस्टमार्टम किया। ये पोस्टमार्टम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगभग 3 घंटे तक चला। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया। 33 वर्षीय ट्विशा की 12 मई को भोपाल में अपने ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस बीच सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता में एक पीठ कल इस मामले की सुनवाई करेगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी इस मामले की जांच CBI को सौंपने पर सहमति व्यक्त की है। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में आज थट्टे हक्कालू नदी में एक ही परिवार के 8 सदस्य डूब गए, इनमें 7 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि शिराली गांव के लगभग 14 लोग सीप इकट्ठा करने के लिए नदी में उतरे थे, लेकिन रात्रि में तेज बारिश के बाद पानी के बहाव की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने के लिए पानी में उतरे अन्य सदस्य भी तेज धारा में बह गए। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के निकटतम परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। कई क्षेत्रों में तेज गर्म हवा चलने से दिन में भीषण गर्मी पड़ रही है। अगले 7 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी भीषण लू का प्रकोप जारी है। वहीं मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई इलाके इस समय भीषण लू की चपेट में हैं।
2: प्रदेश के ज्यादातर शहरों में पारा 43 डिग्री सेल्सियस के पार जा चुका है। मौसम विभाग ने आज टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में तेज लू का रेड अलर्ट जारी किया था। विभाग ने दतिया, निवाड़ी, सागर समेत 11 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन समेत 22 जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया। प्रदेश के कुल 37 जिले हीट वेव की जद में रहे। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 दिनों तक गर्मी और लू से कोई राहत नहीं मिलेगी। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के तहत कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इन एपिसोड में हम प्रतिदिन अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेताओं के कार्यों और जीवन के बारे में जानकारी दे रहे हैं। कार्यक्रम के लिए कल सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड से जुड़े रहें। वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। पुरुषों के ग्रीको रोमन वर्ग में सुमित दलाल ने 63 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में ओजुदबेक खालिम्बेक को हराया और 55 किलोग्राम में नीरज पटेल ने, वहीं रोहित बोरा ने 87 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता। IPL क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। मुंबई में आज हुए मुकाबले में राजस्थान ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हराया। इस बीच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच अंतिम लीग मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली कैपिटल्स ने 16 ओवर में 3 विकेट पर 150 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और अमेरिका ने नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय वार्ता में व्यापार समझौते, ऊर्जा सुरक्षा और गतिशीलता को सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में महत्वपूर्ण बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देबांशु पांडा ने 1,00,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल की। सरकार ने CBSE पुनर्मूल्यांकन पोर्टल की खामियों को दूर करने के लिए IIT मद्रास और कानपुर के विशेषज्ञों को शामिल किया। देश के मध्य और उत्तर पश्चिमी भागों में भीषण लू के कारण जनजीवन प्रभावित। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. India and US outline trade agreement, energy security and mobility as key areas of cooperation in high-level talks in New Delhi. BJP candidate Debangshu Panda sweeps West Bengal's Falta Assembly repoll by over 1,00,000 votes. TMC candidate forfeits deposit. West Bengal government directs all district magistrates to set up holding centers for suspected illegal foreigners. Government ropes in IIT Madras and Kanpur to experts to fix CBSE re-evaluation portal glitches. In Karnataka, 8 people swept away by strong currents in Tatte Hakalu River in Uttara Kannada district. President, Vice President and Prime Minister expressed grief over the loss of lives. Normal life affected due to severe heat wave in central and northwest India. Conditions to continue for next 7 days. And at the Asian Under 23 Wrestling Championships, Indian grapplers clinched 3 gold, 2 silver and 3 bronze medals in Vietnam. And now the news in detail. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and US Secretary of State Marco Rubio held wide-ranging discussions in New Delhi today. Both leaders reaffirmed the strength of the India-US strategic partnership and outlined key areas of cooperation including trade, energy, mobility and regional security. Addressing a press conference following delegation-level talks, Dr. Jaishankar highlighted the need to conclude a trade agreement at the earliest, welcomed the expansion in energy, trade and stressed that diversified energy supplies are vital for India's energy security.
4: Our government's fundamental responsibility is to address the needs of 1.4 billion people. Obviously, ensuring the accessibility and affordability of energy for them is our prime objective. Secretary and I therefore welcome the expansion in our energy trade in recent months. Diversified supplies are at the heart of energy security for India.
3: On the Iran conflict, Mr. Jaishankar said both India and the United States have a strong interest in ensuring that global energy prices remain low and that there is unimpeded commerce. India's position in favor of dialogue and diplomacy as well as safe and unimpeded maritime commerce was also reiterated. He also pointed out that India is one of the very few countries in the world which has strong relations with the US, Israel, Iran, as well as other Gulf nations. Dr. Jaishankar also highlighted the importance of people-to-people ties and said legal mobility should not be adversely affected.
4: People-to-people ties are at the heart of our relationship. I apprised Secretary Rubio of challenges that legitimate travelers face in respect of visa issuance. While we cooperate to deal with illegal and irregular mobility, our expectation is that legal mobility would not be adversely impacted as a consequence.
3: U.S. Secretary of State Marco Rubio strongly underscored the strategic dimensions of the partnership, describing India as one of the United States' most important partners in the world. National Security Advisor Ajit Doval today met U.S. Secretary of State and NSA Marco Rubio in New Delhi. In a social media post, Ministry of External Affairs said the discussion focused on defense, security and strategic technology cooperation, including the Trust Initiative. In West Bengal, Bharatiya Janata Party candidate Debangshu Panda has registered a landslide victory in the repoll for the Falta Assembly constituency. Mr. Panda won by over 1,09,000 votes in a seat widely regarded as a stronghold of the Trinamool Congress, whose nominee slipped to fourth place and forfeited his deposit. The Election Commission had ordered a repoll in Falta following allegations of large-scale malpractice during the polling for the West Bengal Assembly elections. The repolling was held on the 21st of this month. We have more from our correspondent.
5: Breaking the so-called Diamond Harbour model of the Trinamool Congress, BJP has set a record win in the Falta Assembly seat repoll today. Party candidate Debangshu Panda won the seat by a margin of 1,09,021 votes, defeating his closest rival CPIM Sombunath Kurmi, who has got 40,645 votes. Debangshu Panda has got 1,49,666 votes. In an astonishing turn of event, Trinamool Congress's candidate Jahangir Khan finished fourth with only 7,783 votes. Congress is in the third position. By this win, total number of seats of the Bharatiya Janata Party has increased to 208 out of 294 assembly seats in the Vidhan Sabha. Kollan Laha reporting from Kolkata.
3: The West Bengal government has directed all district magistrates to set up holding centers for suspected illegal foreigners and foreign prisoners awaiting deportation and repatriation in line with Ministry of Home Affairs guidelines. According to an official communication issued by the Home and Hill Affairs Department, districts have been asked to take necessary steps for housing individuals identified as staying illegally in the country, including those who have completed prison sentences and are awaiting deportation. The directive instructs authorities to act as per the MHA framework on deportation and repatriation procedures for Bangladeshi nationals and Rohingyas found residing illegally in India. Union Education Minister Dharmendra Pradhan has given directions to depute a team of professors and technical experts from Indian Institute of Technology, Madras and IIT Kanpur to assist the Central Board of Secondary Education, CBSE, in ensuring a glitch-free re-evaluation process. The decision has been taken in view of the developments and concerns raised by students and parents regarding the CBSE post-result services portal. Education Minister Dharmendra Pradhan today spoke with Finance and Corporate Affairs Minister Nirmala Sitharaman to address technical and payment-related issues being faced by students during the CBSE post-result and re-evaluation process. The Education Ministry said that during the discussion, it was decided that State Bank of India, Bank of Baroda, Canara Bank and Indian Bank will assist the Central Board of Secondary Education in strengthening its payment gateway infrastructure.

0: ये आकाशवाणी है। रवि वासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में आज रात प्रस्तुत है सितार वादन। कलाकार हैं पंडित हौरू शंकर भट्टाचार्य। जाने माने संगीतज्ञों वाले विशिष्ट परिवार में जन्मे पंडित हौरू शंकर भट्टाचार्य के दादा श्री लाल मोहन भट्टाचार्य जाने माने सितार वादक थे, जिन्होंने इस सांगीतिक विरासत की नींव रखी। अपने पिता श्री गंगा शंकर भट्टाचार्य के मार्गदर्शन में पंडित हौरू शंकर भट्टाचार्य ने शुरुआती तालीम हासिल की। आगे चलकर आपको विष्णुपुर घराना के श्री मुरलीधर ठाकुर से सीखने का सुअवसर भी प्राप्त हुआ। 1968 में पंडित हौरू शंकर भट्टाचार्य उस समय के बम्बई यानी मुंबई रवाना हुए। आपने वहां बीनकार शैली के लिए प्रसिद्ध इंदौर घराने के प्रवाद प्रतिम सितार वादक पद्म भूषण उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खां से सितार वादन सीखना आरंभ किया। आकाशवाणी और दूरदर्शन के शीर्ष श्रेणी के कलाकार पंडित हौरू शंकर भट्टाचार्य की जाफर खानी बाज के तौर पर एक विशिष्ट पहचान है। आपने देश और विदेश के तमाम संगीत समारोहों में अपनी बेहतरीन प्रस्तुतियां दी हैं। पंडित हौरू शंकर भट्टाचार्य भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी ICCR के सूचीबद्ध कलाकार हैं। साथ ही आपको अनगिनत पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। यही नहीं, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा आयोजित अपना उत्सव समारोह में आपने संगीत निर्देशक की भूमिका भी निभाई है। आज रात पंडित हौरू शंकर भट्टाचार्य के साथ तबले पर संगत करेंगे प्रशांतो दे रॉय।
1: इन द रवि वासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा टुनाइट वी प्रेजेंट सितार रिसाइटल बाय पंडित हौरू शंकर भट्टाचार्य। बोर्न इन अ डिस्टिंग्विश्ड म्यूजिकल फैमिली ऑफ अकॉम्प्लिश्ड म्यूजिशियंस वेयर हिज ग्रैंडफादर द रिनाउंड सितारिया श्री लाल मोहन भट्टाचार्य इज सेड टू हैव लेड द फाउंडेशन of this rich legacy, and Pandit Hara Shankar Bhattacharya

0: सितार वादन के अंतर्गत आप पंडित हरशंकर भट्टाचार्य से राग दरबारी सुन रहे थे। आपकी अगली प्रस्तुति है राग छायानट, जो आप आलाप से शुरू करेंगे। यह बंदिश गत में विलंबित तीन ताल तत्पश्चात द्रुत तीन ताल में आबद्ध है।
1: यू आर लिसनिंग टू राग दरबारी ऑन द सितार बाय पंडित हरशंकर भट्टाचार्य। He continues with his presentation in Rag Chayanat, which begins in Alap with a composition set to Gat in Vilambit and Drut Tintal.

0: सितार वादन के इस कार्यक्रम में आप राग छायानट सुन रहे थे। पंडित हरशंकर भट्टाचार्य आज की इस प्रस्तुति का समापन राग जिला काफी के साथ करेंगे। शुरुआत आलाप से होगी और यह बंदिश गत में दीप चंदी, तत्पश्चात द्रुत तीन ताल में आवत है।
1: यू आर लिसनिंग टू राग छायानट इन द सितार रिसाइटल। Pandit Harishankar Bhattacharya concludes his presentation with Rag Zila Kafi. Beginning with Alap, the composition of the rag is set to Gat in Deep Chandi and Drut Tintal.

0: सितार वादन के इस कार्यक्रम में आप पंडित हरो शंकर भट्टाचार्य से राग जिला काफी सुन रहे थे। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे प्रशांतो दे रॉय।
1: यू आर लिसनिंग टू राग जिला काफी इन द सितार रिसाइटल बाय पंडित हरो शंकर भट्टाचार्य। ही वॉज अकम्पनीड ऑन द तबला बाय प्रशांतो दे रॉय।
0: इसी के साथ रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा आज रात यही संपन्न होती है।
1: एंड विद दिस वी एंड टुनाइट्स रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। दिस प्रोग्राम वाज रिकॉर्डेड एट द स्टूडियोज ऑफ आकाशवाणी कोलकाता।

0: आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। अब से कुछ ही क्षण बाद यानी ठीक 11 बजे आप सुनेंगे समाचार। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
2: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
1: ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनका अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
3: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक पाठ्यक्रम के लिए सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 के अंतर्गत 28 मई को होने वाली परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। एजेंसी ने बताया कि यह फैसला सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल जुहा, बकरी ईद की छुट्टी की तारीख में हुए बदलाव को देखते हुए लिया गया है। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा जल्द ही की जाएगी। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने आज सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा और भारतीय वन सेवा की प्रारंभिक परीक्षा 2026 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। आयोग ने बताया है कि ये परीक्षाएं देश के 83 शहरों में 2000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। अंतिम आंकड़ों के अनुसार 8 लाख से अधिक आवेदकों में से लगभग 5,49,000 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में आज थट्टे हक्कालू नदी में एक ही परिवार के 8 सदस्य डूब गए, जिनमें 7 महिलाएं शामिल थे। पुलिस के अनुसार शिराली गांव के लगभग 14 लोग सीप इकट्ठा करने के लिए नदी में उतरे थे, लेकिन रात्रि में तेज बारिश के बाद पानी के बहाव की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने के लिए पानी में उतरे अन्य सदस्य भी तेज धारा में बह गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। देश के मौसम के मध्य और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, दोपहर से देर शाम तक धूप से बचने और बच्चों, बुजुर्गों तथा पहले से किसी बीमारी से पीड़ित लोगों को विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: ଏତେବେଳେ ଯାଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରିଲେ କରି ଶୁଣାଇଲୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର ଶୁଣନ୍ତୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ।
5: ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର ମୁଖିଆ ଖବର ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ତାପସ ରଞ୍ଜନ ସାହୁ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଉତ୍ସବଟି ଆଇବା କାଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ 2026 ବର୍ଷର ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଭାଷାବିତ୍, ଲୋକ କଥାକାର, ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଡକ୍ଟର ମହେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମିଶ୍ର ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନୀ ହେବେ ସମ୍ମାନିତ। କେତେଟା ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦେଶ ବଢ଼ୁଛେ ଇବୋଲା ଭାଇରସ୍ ସଂକ୍ରମଣ। ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ତରଫ ଇବୋଲା ସଂକ୍ରମଣକେ ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସ୍ଥିତି ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଗଲା। ଦେଶେ ନାଇନ ଇବୋଲା ଭାଇରସ୍ ସଂକ୍ରମଣ, ମାତର୍କ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାରକେ ସରକାର ଦେଲେ ପରାମର୍ଶ। ସଂକ୍ରମିତ ଦେଶକେ ନାଇଁ ଯିବାରକେ କଲେ ସତର୍କ। ସାରା ଦେଶେ ପାଳିତ ହେଉଛି ଭଗବାନ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କର 150ତମ ଜୟନ୍ତୀ। ଅବସରରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଜନଜାତି ସାଂସ୍କୃତିକ ସମାଗମରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଲେ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା। କହିଲେ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କି କେନ୍ସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଉପରେ ୟୁନିଫର୍ମ ସିଭିଲ୍ କୋଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାଇଁ ଲଗାଏ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ରାଇଜେ ଜବର ଖରାତାତିକେ ନଜରଥି ରଖିକରି ଦିନର 11 ଉପରବେଳା 3 ତକ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ କାମ ନାଇଁ କରାବାରକେ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ତରଫ ଜାରି ହେଲା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଲଖନପୁର ବ୍ଲକରେ ତିଆର ସରିଥିବାର ଆର୍ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ବିକାଶମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟନ ଆର୍ ଶିଳାନ୍ୟାସ କଲେ ରାଜସ୍ୱ ଆର୍ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଗହିରମଥାରେ ଚଳିତ ବଛର ସମୂହ ଅଣ୍ଡା ନାଇଁ ଦେଇକରି ଫେରିଗଲେ ଅଲିଭ୍ ରିଡ୍ଲେ କଇଁଛ। ବିଶ୍ୱ ତାପାୟନ, ବଢ଼ତି ତାତିଆର, ଠିକ୍ ପରିବେଶ ନାଇଁ ମିଲ୍ବାରଟା ହେଇପାରେ କାରଣ ବୋଲି ଅନୁମାନ କଲେ ପରିବେଶବିତ୍। ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ଆର୍ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରଟି କାମ କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ କଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ। ରାଇଜେ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରକେ ବରକସ କରବାର ନିରନ୍ତର ବିଜୁଳି ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ଉପରେ ଦେଲେ ଜୋର। କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଉତ୍ତର କନ୍ନଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ତଟେ ହକାଲୁ ନଦୀର ଜବର ସ୍ରୋତଥି ଆଜି ଭାସିଗଲେ 8 ଜୀବନ ଯାଇଥିବା ଲୋକର ଲାଗି ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆର୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଭିଏତନାମଠାରେ ଚାଲିଥିବାର 23 କମ୍ ବୟସର ଏସୀୟ କୁସ୍ତି ଚମ୍ପିୟନ୍ସିପ୍ଟି ଭାରତର ମଲ୍ଲଯୋଦ୍ଧାମାନେ ଜିତିଲେ 3 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, 2 ରୌପ୍ୟ ଆର୍ 3 କାଂସ୍ୟ ପଦକ। କୋଲକାତା ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ଠାରେ ଚାଲିଥିବାର ଆଜିର ଆଇପିଏଲ୍ର 2 ମ୍ୟାଚ୍ଟି ଖବର ଲେଖାଯିବାର ତକ୍ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସର 203 ଜବାବ ଥି କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସକେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାର ଲାଗି 35 ଥି ଦରକାର ଆର୍ 75। ଆଇବା 24 ଭିତରେ ଜବର ଗରମ ଆର୍ ହିଟ୍ ୱେଭ୍କେ ନେଇକରି ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, ବୌଦ୍ଧ, ସୋନପୁର ଆଉ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାକେ ସତର୍କ କରାଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ଶେଷ ହେଲା। ଜୁହାର।